लता जी की आवाज में हम आपको सुनाएं, जहाँ तक मेरा ख्याल आप बहुत इत्मीनान से सुन रहे होंगे ये गीत और बहुत सुन रहे थे ये शानदार गीत उफरफान हिंदुस्तानी रेडियो। अच्छा चलिए, गीत तो समाप्त हो गया, तो गीत अगर जो समाप्त हो गया तो हम पेश करते हैं अगला गीत, और जिसमें लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार है, फिल्म रूप तेरा मस्ताना।

दिल की बातें दिल ही जाने, लता जी और किशोर कुमार जी मिलके आपको सुनाए ये शानदार गीत, और हमने पेश की फिल्म रूप तेरा मस्ताना में से निकाल कर 1972 का ये फिल्म है, आनंद बख्शी की लिखी हुई गीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। चलो हम पेश करते हैं, बढ़ते हैं चोरी चोरी के ओर। फिल्म चोरी चोरी में जितनी गाने हैं सब बहुत प्यारा है, उनमें से एक गीत मैं निकाल रहा हूँ, बस आप सुनिए कौन सा गीत। लता जी और मन्ना डे जी,

पंछी बन रूप बन के फिर लता जी की आवाज में फिल्म चोरी चोरी में से निकाले हैं ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। चलिए आपको धीरे धीरे मैं कहीं और ले जा रहा हूँ, जी हाँ धीरे धीरे कहीं और ले जा रहा हूँ और आपको सुनाता हूँ ये गीत।

द मैन विद गोल्डन वॉइस, तरत साहब में आपको सुनाए हैं, उनके आगे गमे दिल भुला ना पड़ा, और ये शानदार गीत छुपाना पड़ा, और ये शानदार गीत हमने पेश किया वो फरफाह हिंदुस्तानी रेडियो www.fm.nl पर। आप चुने जो लोग चुन के इन मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। हमने कहा था धीरे धीरे आपको पीछे लग जाएंगे सालों में, तो लीजिए हम आपको ये सुना रहे हैं। क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊं इस तरह से?

दिल से मिला ले दिल प्यार कीजिए। और ये गीत चला लता जी आपको सुनाए हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए, हमने कहा था आपको पीछे ले जाएंगे, तो लीजिए पीछे ले जाते समय हम आपको ये भी सुना रहे हैं उसी समय का। ये बहुत प्रचलित गाना था, बहुत पॉपुलर था, कौन इसे नहीं जानता है।

दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है, शमशाद बेगम की आवाज़ में फिल्म बहार। जी हाँ, फिल्म बहार में से निकाले हैं ये शानदार गीत, बहुत पुराने गीत जहाँ तक मेरे ख्याल है। कितने लोग यही गाना सुन सुन कर आज बड़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए, आजा हो गए, आजी हो गए, नाना हो गए, नानी हो गए, यहाँ की पर राजा पर नानी भी हो गए होंगे। और ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। उम्मीद है इस गीत से आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो गए होंगे। क्या ख्याल है? फिल्म फिल्म फिल्म बिन फेरे हम तेरे, नेगनती नेगनन सैफन तक का ये गीत उषा खन्ना के साज पर रफ़ी साहब की आवाज़ में। जी हाँ, ये गीत हो सकता है बहुत दिनों बाद आज आप सुनोगे, मैं भी बहुत दिनों बाद ये गीत चला रहा हूँ, लेकिन ये भी मुमकिन है कि शायद हमारे सहयोगियों ने चलाए होंगे, तो मेरी बदनसीबी है, लेकिन गीत तो मैं चलाऊँगा अवश्य। रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म बिन फेरे हम तेरे।

दोस्त बन के आए हो, दोस्त बन के रहना है रफी साहब। और उषा खन्ना के साथ पर, उषा खन्ना जी के साथ खुद नेकते नेकन से इफ तक का ये गीत हमने पेश किया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, जी हाँ, और वो ये है

0: इन प्यार की राहों में ये शानदार गीत चलाया कार्यक्रम में हमने पेश की। हमने शायद तेरे गीत रखे हैं, इसे हम चुन नहीं किए हैं, सुने भी नहीं हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं उसका टाइटल, अच्छी भी लगती हूँ सुंदर भी लगती हूँ। तो चलो सुनते हैं कि लता जी क्या कह रही है। फिल्म है गरम खून, अरे वाह क्या बात है, फिल्म है गरम खून और लता कह रही है मैं अच्छी भी लगती हूँ सुंदर भी लगती हूँ। तो चलो सुनते हैं।
1: अच्छी

आजा रे आजा सनम, अच्छी भी लगती हूँ, सुंदर भी लगती हूँ। शंकर जय किशन के साज था। जी हाँ, निकली ताकत का ये फिल्म है। फिल्म गरम खून, जैसे गरम खून है वैसा फिल्म की गीत भी है, और लता जी आपको सुनाए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, और वो ये है, इस तरह से आ रहा है। जी हाँ, मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, फिल्म पूर्णिमा में से।

माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी फिल्म पूर्णिमा में से निकाल कर ये गीत हम पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलो देखते हैं हम अगला गीत चलाने वाले हैं और वो ये है, जी हाँ, फिल्म फिल्म फिल्म मिलाप, फिल्म मिलाप में से निकाल रहे हैं, ये भी निकिता ट्विन सैफ तक का है, ब्रिजभूषण के साज पर। और चलिए हम आपको सुनाते हैं माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, करोड़ों के दिल पर राज करने वाला।

कई सदियों से कई जनों से द हार्ट ऑफ मिलियंस मैथी मुकेश आपको सुनाए ये शानदार गीत आओ चलाओ फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जी हाँ देखते हैं तो ब्रिजभूषण के साज पर, जी हाँ ब्रिजभूषण के साज पर निकली त्वें से ही तक का ये गीत हम आपको सुनाए फिल्म मिलाप में से निकाल कर।

कि मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म मेहंदी लगी तेरे हाथ और ये नहीं नहीं मेहंदी लगी मेरे हाथ, हाँ मेहंदी लगी मेरे हाथ 1962 का ये फिल्म निकली तू ही सस्ते का ये फिल्म है और हमने ये गीत पेश किए आपके लिए सभी श्रोताओं के लिए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, ये भी एक लंबा चौड़ा गीत है। जी हाँ चलो सुनते हवा हवाई।

हवा हवाई फिल्म का नाम है मिस्टर इंडिया और गाने वाली थी कविता कृष्णमूर्ति जी। तो ये तो आजकल की कैबरे है ना, जो आजकल चल रहा है उससे पहले की कैबरी थी ये। चलिए हम उससे पहले की यानी सिजदयार शस्त्र का गीत आपको सुनाते हैं और देख रहे हैं कि गंगा जमुना में किस तरह से वैजयंती माला ये गीत एक्ट की है और अपनी नृत्य पेश की है।

वाह क्या बात है, गंगा जमुना में से हम आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, और हमने पेश किया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, और ये उस ज़माने के गीत था यानी सस्त ख्यार का, गंगा जमुना में से निकाले हैं नौशाद अली के साज पर। चलिए उसी फिल्म में से एक बार हम आपको सुनाते हैं जी नहीं, ये मदर इंडिया का है, ये मदर इंडिया का है उन दिनों की।

वो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे धीरे हाँ करे शमशाद बेगम, और साथ ही नौशाद अली के साज पर ये गीत चला। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम निगेटिव सेवन फाइव तक का ये गीत और फिल्म मदर इंडिया में से निकाले। आपके जानकारी के लिए बता दूं, मदर इंडिया पहली फिल्म थी थिएटर द पारल में निगेटिव सेवन फाइव तक में जब चला बॉलीवुड का। उससे पहले नॉन हिंदी फिल्म चला था ये मुझे नहीं मालूम, कोई अमेरिकन फिल्म या फ्रांस फिल्म था। बहरहाल हिंदी फिल्म पहला फिल्म था मदर इंडिया जो द पारल में चलाया गया सूरीनाम देश में 1975 तक में।

दगा दगा वही वही ये शानदार गीत चला ऊपर पावन हिंदुस्तानी रेडियो हमने पेश की इस तरह से। लोग पूछ रहे थे गंगा जी आपने कितनी सीफ ने फाइफ तक की बात कर रहे थे यात्र दपाल का पहला फिल्म, तो वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हमने हिंदी फिल्म सबसे पहले कभी कहाँ देखा है, तो हमने पहला फिल्म देखा है रेक रियासी साल में देखे हैं और वो था फिल्म आवारा, और उसके बाद टेटन में देखे हैं तो स्वर्धन उफुम ब्रक्सर क्या नाम है लुक्सोर में देखे हैं फिल्म मिस्टर मिसेस 55 टेटन में देखे हैं, उससे पहले रेक रियासी साल में देखे थे। चलिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं और वो इस तरह से है।

मेरी भीगी भीगी सी एवरग्रीन किशोर कुमार जी आपको सुनाए ऑफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो फाउन एफएम इंटरनल पर आप चुन हैं, जो लोग चुन के मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं। क्या ख्याल अगर मैं आपको ये गीत सुनाऊं, इस तरह से है आ रहा है। धर्मात्मा 1975 ने हिंदी फैशन सही।

फिल्म धर्मात्मा में से निकाले हैं मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और कंचन जी निकली फैंसी फिल्म का ये गीत हम आपको सुना है शाम के इस तरह से कार्यक्रम में। तो चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, लता जी है रफी साहब की आवाज़ में साथ साथ दे रहे हैं।

जा। फिल्म वारिस में से आर डी बर्मन के साथ पर रफ़ी साहब और लता जी, इन दोनों की आवाज़ में हमने पेश की ये शानदार गीत। चलिए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और लीजिए एक बार फिर, जी हाँ,

झूम के गायों आज मेरे दिल। जी हाँ, फिल्म देखते हैं, कौन सा फिल्म था तो अच्छा दिखा तो नहीं है, बहरहाल इस वक्त मेरे दिमाग में नहीं, बहरहाल गीत हम आपको सुनाए। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, जी हाँ इसका फिल्म तो मालूम है ज़रूर, फिल्म रोटी में से निकाल रहे हैं नेक तीन फिर सैफन तक 1974 का ये गीत, इस तरह से एवरग्रीन किशोर कुमार।

0: मेरी बुलबुल बुल, जी हाँ पैसा मिलेगा, एवरग्रीन किशोर कुमार ने कितनी फिर से फिर तक ये फिल्म रोटी में से निकालने हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर।
1: जिक्र होता है जब कयामत का, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी माई लव से आप सुनेंगे द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं।

आप सुन रहे थे शीघ्र होता है जब कयामत का। अदवाइती मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी माई लव से हमने पेश किए हैं। रुक जा ऐ हवा, लता जी आपको सुनाने वाले हैं। ये सुंदर सा गीत आप सभी के वास्ते हम पेश करते हैं। फ्रॉम द मूवी शागिर्द से आप सुनेंगे।

0: ही आप सुन रहे थे रुक जा ए हवा। हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते। इंसान का जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है। इंसान का जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल है। अगर दिल ही साफ नहीं तो चमकते चेहरे का कोई फायदा नहीं। फ्रॉम द मूवी आरसू से हम पेश करते हैं, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं और गीत का बोल है ए नर्क इसे मस्ताना।
1: ए नर्क

आप सुन रहे थे एनर्जी से मस्ताना, बस इतनी शिकायत है। एक बहुत सा सुंदर सॉन्ग हम चुन कर रखे हैं आप सभी के वास्ते, और लता जी आपको सुनाने वाले हैं मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है, जिंदगी सब्र करना सिखाती है, जिंदगी सब्र करना सिखाती है और सब्र जीना सिखाता है।

लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। जिंदगी तो हल्की फूकी सी है, जिंदगी तो हल्की फूकी सी है, सरा बोझ तो ख्वाहिशों का है। मैंने देखा तूने देखा फ्रॉम द मूवी दुश्मन से हम पेश करते हैं लता जी के साथ में किशोर डा आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे मैंने देखा तूने देखा, लता जी के साथ में किशोर दा आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी दुश्मन से हमने पेश किए हैं। कोशिश करना कि जिंदगी में वो शख्स आपको हमेशा मुस्कुराता हुआ मिले, जो आपको रोज आईने में दिखाई देता है। कान में झुमका, चाल में झुमका। फ्रॉम द मूवी सावन भादो से हम पेश करते हैं, मोहम्मद रफी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे कान में झुमका, जाल में ठुमका, लगे पशासी झटके। और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो ये है। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं सर आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी, और वो ये है, इंसान तो हर जगह पैदा होते हैं मगर इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। कहाँ चल दिए, इधर तो आओ, फ्रॉम द मूवी झुक गया आसमां से हम पेश करते हैं।

0: चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे झुक गया आसमां से, कहाँ चल दिए इधर तो आओ, मेरे दिल को न ठुकराओ, बोल सितमगर मान भी जाओ। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। हाँ मैंने भी प्यार किया मुकेश जी के साथ में सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाने वाले हैं। लोग हमारी कदर उस वक्त नहीं करते जब हम अकेले हो, बल्कि उस वक्त करते हैं जब वो अकेले हों।

फ्रॉम द मूवी बुन जो बन गए मोती, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफी जी और सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम को हम और आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, मंजिल इंसान की हौसले आजमाती है, किसी भी बात से हिम्मत ना हारना मेरे दोस्त, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। आप यहाँ आए किस लिए? किशोर दा आपको सुनाने वाले हैं साथ में आशा जी के साथ।

0: ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओह काम तो बताइए बताइए।
0: ना ना ना पहले जरा

0: अपना बना लो, हाथ जरा थाम लो, बार बार पूछो ना, दिल से भी काम लो।
1: काम तो बताओ।
0: काम सीधा साधा है,
1: बोलो बोलो।
0: आज लेना एक वादा है।

0: बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: अभी आप सुन रहे थे आप यहाँ आए किस लिए, आशा जी के साथ में किशोर दा आपको सुनाने वाले थे। सुंजा आ ठंडी हवा, थमजा ए काली घटा आप सुनेंगे। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी, और वो ये है, कुछ मजबूत रिश्ते बड़ी खामोशी से बिखर जाते हैं, कुछ मजबूत रिश्ते बड़ी खामोशी से बिखर जाते हैं, कुछ लोग खुद टूट जाते हैं दूसरों की खुशी के लिए।

किशोरदा और लता जी आपको सुनाने वाले थे सुंजा आ ठंडी हवा फ्रॉम द मूवी हाथी मेरे साथी से हमने पेश किए हैं। मेरी सनम है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से आप सुनेंगे टुकड़े हैं मेरे दिल के ए यार तेरे आंसू। आपको सुनाने वाले हैं मोहम्मद रफी जी।

अभी आप सुन रहे थे टुकड़े हैं मेरे दिल के ए यार तेरे आंसू फ्रॉम द मूवी मेरे सनम से हमने पेश किए हैं, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, मोहम्मद रफी जी आ रहे हैं प्रोग्राम में आशा भोसले के साथ में।

अभी आप सुन रहे थे फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी ये रात फिर नहीं आएगी। गा दीवाने झूम के फिल्म का नाम है फ्लैट नंबर 9। इसी फिल्म से आपको सुनाने वाले हैं द माइटी मुकेश जी।

अभी आप सुन रहे थे गा दीवाने झूमके, रात की जुल्फे झूमके, मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। सोचा था प्यार हम ना करेंगे, ब्लफ मास्टर है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से आप सुनेंगे।

सोचा था प्यार हम ना करेंगे, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी ब्लफ मास्टर से हमने पेश किए हैं नमायती मुकेश जी की आवाज में। लता जी के साथ में मुकेश जी प्रोग्राम में आ रहे हैं और गीत का बोल है, दुनिया वालों से दूर, चलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर। उजाला है फिल्म का नाम।

आप सुन रहे थे दुनिया वालों से दूर, चलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर। जिस दिन से मैंने तुमको देखा है, इस दिल में क्या हुआ है, एक सपना सा जागा है। मोहम्मद रफी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं, फ्रॉम द मूवी परवाना से आप सुनेंगे।

जिस दिन से मैंने तुमको देखा है उस दिन में एक सपना सा जागा है। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी परवाना से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे। मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ और वो ये है कि जमीन वाले मायूस कर सकते हैं, जमीन वाले मायूस कर सकते हैं मगर आसमां वाला नहीं। चल मेरे दिल लहरा के चल।

मेरे दिल लहरा के चल, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी इशारा से, अभी आप सुन रहे थे द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। मस्ती भरा है समा, हम तुम्हें दोनों यहाँ, फ्रॉम द मूवी परवरिश से हम पेश करते हैं लता जी के साथ में मन्ना दे जी प्रोग्राम में आ रहे हैं।

पे सुन रहे थे मस्ती भरा है समा, हम तुम हैं दोनों यहाँ। मन्ना दे जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले थे। कोई कोई आदमी दीवाना होता है, फ्रॉम द मूवी स्वीट हार्ट से हम पेश करेंगे द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि कदर वो होती है जो किसी के होते हुए हो, कदर वो होती है जो किसी के होते हुए हो, और जो किसी के जाने के बाद होता है वो पछतावा होता है।

नमाइती मुकेश जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे, कोई कोई आदमी दीवाना होता है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा नेक हम सफर है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा नेक हम सफर है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। जो सिर्फ खुशी का मोल करे वो दोस्त नहीं सौदागर है। फ्रॉम द मूवी मधुमती से आप सुनेंगे

जो सिर्फ किसी का मोलक यानी जो सिर्फ खुशी का मोलक करे वो दोस्त नहीं सौदागर है। नमायती मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी मधु मालती। जिंदगी की सबसे बड़ी हार किसी की आंखों में आंसू आपकी वजह से, और जिंदगी में यानी जिंदगी की सबसे बड़ी हार किसी की आंखों में आंसू आपकी वजह से, और जिंदगी की सबसे बड़ी जीत किसी की आंखों में आंसू आपके लिए।

द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी सोता यानी सोसाइटी से, दिल मेरे तू अकेला था तू अकेला है। मुस्कुराहटे झूठी भी हुआ करती है जनाब, मुस्कुराहटे भी झूठी हुआ करती है जनाब, इंसान को देखना नहीं समझना सीखो। मोहम्मद रफ़ी आपको सुनाने वाले हैं ओ मेरे शाह हुआ।

अभी आप सुन रहे थे ओ मेरे शाह खुबा ओ मेरी जाने जनाना, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे।

मित्रों, आज जो बतलाने जा रहा हूँ उसे आज भी सुनना और जीवन में जरूर उतारिए। इसलिए तो हम बार बार ये बतलाते हैं ना, हम भी सुनते हैं, हम भी अपने जीवन में उतारते हैं मित्रों। तो ज्ञानी व्यक्ति, ध्यान करना, ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वो एक दिन जरूर मरेगा। आप भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, सभी मरेंगे। आप तो रोज देखते हैं मित्रों, तो शोक किस बात की। अच्छा ही इंसान के नाते रोना पीटना हो जाता है। केवल ज्ञानी ही मित्रों, केवल ज्ञानी ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता है मित्रों। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव है, ठीक उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन सफलता, केवल तीन शास्त्रों से प्राप्त होती है मित्रों, धर्म, धैर्य और साहस। धर्म, धैर्य और साहस मित्रों, यही तीन चीजों से प्राप्त होता है।

मित्रों, कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि ध्यान करना मित्रों, हम का बोलते हैं अपने देश में, कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। किससे? अपने कर्मों से महान बनता है, जैसे आप, और ना जैसे बगल वाले घूसखोरी देकर डिग्री ले लेते हैं वगैरह, बोले हम महान हो गए। खबरदार, पास रुपए मित्रों, कुछ पाना है, कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं, साथ छोड़ ही जाते हैं। शायद इसका अनुभव है आपको, है जिस पे आप बहुत भरोसा करते थे, है अमान दिमानी फ्यूर खदराजी प्रसोद, है मित्रों। तो धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब तुम्हारे कर्म का होगा, जरूर होगा, और धर्म का नहीं मित्र, धर्म का नहीं मित्र, गरीब है या अमीर ये मायने नहीं रखता है, मतलब नहीं रखता है, बल्कि वह आपकी बुरे समय में आपका साथ कितना देता है, दिस न अतोरी, साथ कितना देता है और कहाँ तक मित्रों, ये मायने रखते हैं, ये मायने रखता है, और ना कुछ और है। दोस्तों, इन सब बातों पे ध्यान रखते हुए आगे सुनिए भजन को।

मित्रों, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरा में चमकती है, ठीक उसी प्रकार मित्रों, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है। को आप भी कोसते हो ना? नहीं तो ठीक है। तो मनुष्य अपने भाग्य को कोसता है हमेशा ही, तो ये जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। आपका कर्म आपके हाथ में है मित्रों, और ना किसी और के हाथ में है।

मित्रों, जीवन बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत बनाने के लिए हम खुद हैं। खुद ही हम जीवन को खूबसूरत बनाते हैं और बिगाड़ भी देते हैं। और जब बिगड़ जाता है तो हम उंगलियां दिखाते हैं किसी और के, वो करे कारण भैले, वो कराई से, वो एक न कराई से, तू अपने कर लो। मित्रों, खबरदार, उंगली मत दिखाया करो। सत्य से कमाया धन, मित्रों, सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है। और छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरा नहीं होते तो रास्ता बदलिए, अपने रास्ता को बदलिए, अपने तरीका को बदलिए। सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। पेड़ भी बदलते रहते हैं अपने पत्तों को, जरिया थोड़ो बदले है। तो तू कहे कि अपना जरिया, अपने तरीका को बदल दो जीने के, उस साइड ठीक नहीं होगा ना, तो उसे बदलो, बदलो मित्रों।

दोस्तों, किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे, ध्यान करना, किसी के संगत से आपका विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना मित्रों कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनके विशेषताओं से सीखता है। मगर आप तो नहीं, आप सीखते नहीं, आप तो जलन करते हो। ऐसे बात नहीं है तो बहुत अच्छी है, तो देखकर उनको विशेषताओं को सीखो, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करो, जलन मत करो, क्योंकि जलन में क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मित्रों, कुछ नहीं मिलेगा।

दोस्तों, विश्वास के बगैर दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता है। ध्यान करना, आप अपने बाल बच्चों को अब खुद समझे। विश्वास के बगैर दुनिया में कोई भी रिश्ता हो ज्यादा देर तक कायम यानी टिक नहीं सकता है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता मित्रों, तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करें। और जो लक्ष्य में खो गया समझो वो सफल हो गया। और जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। जरूर सफल होंगे आप मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं है।

पाप हरो मेरे प्रभु।

हर नई सुबह का नया नजराना, ठंडी हवा लेके आए पैगाम हमारा। जागो उठो तैयार हो जाओ, खुशियों से भरे रहे आज का दिन तुम्हारा। सभी सुनने वालों को राम राम नमस्ते। धर्म कर्म फा ऑन हिंदुस्तान रेडियो का सुबह के भजन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। आप सभी को फाहन के टीम की ओर से एक शुभ दिन प्रगट हो।

ये बिहारी की अब की बार सुबह सुबह ले शिव का नाम, सही बात है दोस्तों सुनने वालों, अगर आप शिव का नाम सुबह सुबह लेंगे सुबह पर, तो आपका दिन कितना अच्छा से कट जाएगा।

ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आप रात्रि को आराम से सोया या कभी कभी हो जाता है कि नींद नहीं आती, फिर भी जब पलंग से आप अपन पाँव रखा फिर जमीन पर, तो शिव का नाम हमेशा ले लेना, आपका दिन सही से कट जाएगा। आपकी बार बंदे किस पर करे गुमान, तू है तो दो दिन का मेहमान।

बात तो पूरे सही है, किस पर करे गुमान तू, तू तो है दो दिन का मेहमान। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।

गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। फाह हिंदुस्तान रेडियो के सुबह के भजन कार्यक्रम धर्म कर्म आप सुन रहे। अगर आप ये प्रोग्राम स्पॉन्सर करना चाहते हो तो तार कीजिए 0 से 3 6 5 2 8 8 4 0 पर।

सुबह सुबह ले गणपति नाम। गणपति बाबा आपका रक्षा जरूर करेंगे दोस्तों, सिर्फ आपको उनका नाम लेना है। हरिओम सरन जी के आवाज में एक दूसरा भजन आप सुनेंगे।

श्री राधे गोविंद राम मन भजले हर का, हरि का प्यारा नाम है। दोस्तों, एक कव्वाली प्रोग्राम में चलेगा, सभी मुस्लिम बहन और भाइयों के लिए स्पेशल।

का हैप्पी स्टेशन 500 हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। लगभग एक घंटे तक आप सुनेंगे तेरे होठों के फूल। आप जानते हैं दोस्तों, जब प्यार मोहब्बत होता है तो नजर पड़ता है आँख पर और आँख के बाद तुरंत होठ पर। जी हाँ, ये प्यार मोहब्बत की कहानी है। फिर भी जब होठ है दोस्तों तो फूलों की तरह तो हमेशा रहता है, और यही होठ तो अच्छी बात करते हैं, कभी कभी बुरे बात पर। कोई बात नहीं, होठ तो होठ होते हैं। तेरे होठों के फूल जो है प्यारी प्यारी

तेरे होठों से तेरे होठों के फूल प्यारी प्यारी। क्या बात है दोस्तों, ये होठों की कहानी लगभग एक घंटे तक मैं पेश करूँगा। तेरे होठों के तेरे लाली को, तेरे होठों को तेरे लाली को, तेरी जोन को घरियाली को, माइटी मुकेश की आवाज़ में आप सुनेंगे।

तेरे होठों को, तेरे लाली को, तेरे होठों को, तेरे लाली को, ये नासुक नासुक होठों में कैसी बात है, ऐसी बात है जो जो दबाए के चले आए।

हो तो मैं ऐसी बात जो दुहाई है दुहाई, होठ होठ होठ तेरे होठो के फूल आप सुन रहे हैं आपकी का हैप्पी सीजन फाइव निस्ताई रेडियो राजन के साथ। अब की बार होठो से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर लो। ये होठो से छूने वाला बात जो है दोस्तों, ये सिर्फ नहीं संगीत में होना चाहिए, हकीकत में भी जब दो होठ आपस में मिल जाता है तो क्या मजा रहता है। जगजीत सिंह की आवाज़ में

तेरे होठों के फूल, तेरे होठों के फूल, होठों पे बस, होठों पे बस तेरी नाम है। जिस तरह से एक एक सोट एक हेम्प का कनोप खाद जो है उसमें सिर्फ एक बटन जाते हैं, उसी तरह से ये होठ जो है सिर्फ तेरी ही नाम लेते हैं, एक दूसरा नाम का मौका नहीं है।

मेरे प्यार में तेरे प्यार में पागल हो सुबह शाम, होठों पे तो सिर्फ तेरी नाम है, दूसरा नाम कहाँ से आ सकते हैं। होठों डो होठ खिले, डो होठ हिले, एक गीत सुना। तेरे होठों के फूल

जबडो होते हिलते हैं तो न सिर्फ गीत का आवाज आते हैं, एक दूसरा आवाज भी अंदर से आते हैं दोस्तों। आपकी बार तेरे मेरे होठों पे, तेरे मेरी होठों पे मीठी मीठी गीत मिटवा।

तेरे होठों के फूल, तेरे होठों के फूल आप सुन रहे हैं। अगर आपका ख्वाहिश है हो चुमने को लिए, तो आप ये गीत सुनने के बाद कीजिए, अभी मत, थोड़ा से रुक जाइए।

क्या ख्वाहिश है हर पल मेरे होठों पर, हर पल मेरे होठों पर सिर्फ तेरी नाम है। क्या ये मेरी प्रेम की कहानी है?

ये होठों को तारीफ करते करते मुझे डर है कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को नजर न लग जाए। हो सकता है

न करो तो आईना कहीं खुद का नजर न लग जाए, वो भी हो सकता है। सरा संभाल के ये प्यार मोहब्बत कहानी आप अभी सुन रहे थे फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए।

0: सभी को राम राम, नमस्कार और ढेर सारा दुलार पहुँचे। जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे वहाँ तक हमारा पैगाम पहुँचे और ढेर सारी मोहब्बत पहुँचे। दूर दूर से लोग प्रोग्राम को सुनते हैं। मैं हूँ आपकी खिदमत में अनिल सरजू, जो कुछ हिले मिले जुले गीतों से हम आप लोग के सेवा करेंगे। मैंने कुछ गाने चुन करके लाए हैं, कुछ पुराने गाने हैं, और उम्मीद है आप लोग के ज़रूर आज का रेडियो प्रोग्राम फाहून द्वारा ज़रूर पसंद आएगा। आप सब चुन है द एवरग्रीन लव लव फाहून हिंदुस्तानी रेडियो पे, और मैंने चुन करके रखा है मूवी फिल्म हम सफ़र के एक ऐसा गीत है जो लता मंगेशकर और द नाइट मुकेश ने गाया है, जो करोड़ों का दिल जीत चुका है, जीत लिया था, जीत जीते जीते जाते भी है। क्या आवाज़ है मुकेश और लता मंगेशकर का, आवाज़ है किसी राह में किस मोड़ पर। लता मंगेशकर मुकेश लाइरिक्स, जो हाथ और कलम चलाया गया है, जो सिहाही से लिखा गया है वो आनंद बख्शी है। म्यूजिक सजा करके हम लोग तक लाया है कल्याण जी, आनंद जी। हम आप लोग के मिल के सुनाते हैं, जितने लोग प्रोग्राम को सुनते हैं हर एक के लिए ये गीत मैं पेश करता हूँ। नामोस रेडियो फाहून।
1: मैंने देखा नहीं, तुम बंसी भी बजाते हो?
2: हाँ हाँ, सुनाओ।
1: अरे अरे अभी नहीं, ये तुम भूल गए हो, तुम छुप कर जा रहे हो।
2: खुशी के मारे मैं तो भूल ही गया था।
1: खुशी? किस बात की खुशी?
2: न जाने क्यों
1: राजू, तुम बहुत अच्छे हो।
2: बापू और उस्ताद के बाद एक तुम ही हो जिसने मुझे अच्छा कहा।
1: तुम्हारा अपना और कोई नहीं है?

पन्ना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज है। ब्याह सूर्य थे दोस्तों, आनंद बख्शी का लिरिक्स और आप जानते ही राहु देव परमन का म्यूजिक। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं प्रोग्राम। आप ही तो हम हैं, आप नहीं तो हम नहीं हैं, और आप सब चून है द एफ अगेन लव फॉर हिंदुस्तानी रेडियो पे। मैं हूं आपके खिदमत में अनिल जरजू। हम आगे प्रोग्राम चलाते हैं। मुकेश जी का एक गाना हम आप लोग को सुनाना चाहते हैं, जो प्यार से गाया है। जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा मूवी कति पतंग तक का है, और देखा जाए म्यूजिक डायरेक्टर है एरदेव बर्मन। एक बार फिर से आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है, और हम आपके नाम करते हैं क्योंकि आप प्रोग्राम को सुनते ही जितने गाना या गीत हम चलाते हैं बस आप सबके नाम है। दूर दूर से लोग प्रोग्राम को सुनते हैं और बहुत पसंद करते, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। ऐसे ही सुनते रहना, ये गीत भी आप लोग के नाम है मूवी कति पतंग के, जिसमें जितेंद्र आशा परीख ने काम किया है।

जी हाँ दोस्तों, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, मूवी कति पतंग का ये फिल्म है जिसका आपने अभी गीत को सुना है। और जो जो सुनता है हर एक गीत जो मैं चला रहा हूँ बस आप सबके नाम है। चलो दोस्तों, हम अगले को लगा चुके हैं अगले गाने को, और देखा जाए देखिए तो कौन मूवी दो कल्याण नहीं आतन शस्त्र का है यार। और देखा जाए तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई, कभी कभी हो जाता है चना नज़र भी खफा हो जाते हैं लोग, लोग से जुदा हो जाते हैं तो क्यों खफा नहीं हो सकता है। पद्मा श्री मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का आवाज़ है, म्यूजिक डायरेक्टर रवि। हम आपको सुनाते हैं, मिल के सुनेंगे तुम्हारी नज़र क्यों खफा हो गई।

जहाँ दोस्तों तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, पद्मश्री मोहम्मद रफी ऑफ द क्वीन लता मंगेशकर की आवाज, म्यूजिक जिसने सजाया है वो रफी है और लाइक साहिर, मूवी दो दो कल्याण निखंदीन अख्तर सस्ते का जिसमें माला सिन्हा और विश्वजीत ने काम किया है। चलो दोस्तों अगले गीत को मैंने चुन पे रख चुका हूँ। देखा जाए एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले, मूवी जिंदगी और तूफान निखंदीन फैफन जैफन तक का है यार, और गाने वाला वही है मुकेश लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का म्यूजिक है और लाइन से राम अवतार। चलो हम मिलकर सुनते हैं

जी हाँ, हमारे सुनने वाले एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले, मुकेश की आवाज थी। चलो दोस्तों आगे ले चलते ही, ना जाने क्या हूँ। बहुत विशाल गाना है, यह गाना है लता मंगेशकर का, मूवी दर्द है नहीं कंती एनन तख्त का, ना जाने क्या हुआ जो तुम छोड़ लिया छू लिया। ये गाना हम सोच रहे सब कोई जाने और सब कोई के मुँह लगे, लता मंगेशकर की आवाज़ है और सब कोई सुने कोई जा मिल के फोन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप सब चोर है दोस्तों, मिल के सुनेंगे न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया।

जी हाँ प्यारे सुनने वाले, मैं चली मूवी प्रोफेसर निकंदन ट्वेन सस्त का। चलो आगे ले चलते, दूरी ना रही कोई, लता मंगेशकर की आवाज है। और देखा जाए जी हम दोस्तों, लता मंगेशकर म्यूजिक, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लाइली से कफीन आजाद मुद के जो लिखा गया है, हाथ और कलम उसी ने चलाया है। चलो मिलके सुनते हैं रेडियो फोन के जरिए से।

लता मंगेशकर। लता मंगेशकर एक एहसास है जिसे महसूस किया जाता है, बयान नहीं। ये एक नाम है जिसे सुनते ही मेरे दिल में सुकून और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। टू मी शी इज इथीरियल, समवन फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, लार्जर देन लाइफ, नो लेस देन अ गॉडेस, अ देवी। दिस वन नेम इवोक्स अ मिलियन फीलिंग्स इनसाइड मी। आई हैव कोल्ड फीट, वीक नीज, अ नॉट इन माई स्टमक, I smile on my lips and tears in my eyes. In other words, I feel alive when I hear this name, Lata.

जी हाँ दोस्तों, तुम मुझ में समा जाऊं, मैं तुझ में समा जाऊं। द क्वीन ऑफ लता मंगेशकर की आवाज़ थी और कर्तव्य मूवी का नाम है और रेखा और धर्मेंद्र पाजी ने इसमें काम किया है। चलो दोस्तों, हम आप लोग के सुनाते हैं तेरे इश्क का मुझ पे हुआ है असर।

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Har dil se hamara nata hai, har dil se hamara rishta hai, har roz ki tarah हमसे तुमसे होगी प्यारे प्यारे बातें और कुछ प्यारे प्यारे गाने हम आप लोग के सुनाने वाला है। जहां तक ये आवाज पहुंचे, जहां तक लोग मुझे सुनते हैं, हमारा प्यार भरा पैगाम पहुंचे, ढेर सारा मोहब्बत पहुंचे। आप सब जानते हैं हम सब चून है द एवरग्रीन लव फॉर हिंदुस्तानी रेडियो पे। हम आप लोग के आज चलेंगे कुछ मूवी, एक मूवी है जिसे काफी अच्छे अच्छे गाने हैं और देखा जाए हरियाली और रास्ता के हम कुछ गाने आप लोग के सुनाएंगे। आज मेरा प्रोग्राम ऐसे रहेगा, हम हर गाने सुनाएंगे आप लोगों के, अच्छे अच्छे गाने जो हरियाली और रास्ता में गाया गया है। तो हम ले चलते हैं, पहला गाना लेके चलते हैं हरियाली और रास्ता के, नेखन तीन तो इन शस्त्र के, जिसमें मनोज कुमार मालाजीना ने काम किया है, शंकर जय किशन का ये म्यूजिक है और हम सुनते हैं, हम आप लोग के सुनाते हैं। चलो मिलके सुनते हैं।

जहाँ दोस्तों बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफर अब तो बता, मूवी हरियाली और रास्ता नई खतीन तो यह शस्त्र का जिसपे मनोज कुमार माला जिले ने काम किया है, शंकर जय किशन का म्यूजिक है। चलो हम ले चलते हैं एक बार फिर से हरियाली और रास्ता से निकाला हुआ एक गीत है, एक गाना है जो लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ है और देखा जाए शंकर जय किशन का म्यूजिक है, लाख तारे आसमान पे।

जी दोस्तों, दिल मेरा चुपचाप जला, हरियाली और रास्ता, नेगेटिव ट्विंस का फिल्म है, मूवी, मनोज कुमार माला जीना ने इसमें काम किया था। अभी आप सुन थे मुकेश और लता का आवाज। हमने चलते ही एक बार फिर से हरियाली और रास्ता का बोले, कहीं कहीं पे राजा और रानी भी रहता है ना, तो चलो राजा और रानी के बारे में हमको सुनाते हैं और हरियाली और रास्ता का निकाला गाना है।

जहाँ दोस्तों एक बार मैंने फिल्म से चला दिया था हरियाली और रास्ता का, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। हम सोचते हैं आगे में आप लोग के भी पसंद है। तो ठीक है, एक था राजा एक था रानी।

जहाँ दोस्तों बोले नाव तो खो गया रह गया पानी, फिल्म हरियाली और रास्ता से भी आप सुन रहे थे। एक था राजा एक था रानी, नेकेडिन टू इंसेस्ट का है, मनोज कुमार माला जीना ने काम किया है। चलो मैं चलते हैं दोस्तों हरियाली रास्ता का नेकेडिन टू इंसेस्ट फिर से एक बार देखा जाए कौन सा गीत मैंने रखा है यहाँ पे, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। शंकर जय किशन का म्यूजिक है।

जहाँ दोस्तों इब्तदाई इश्क में हम हरियाली और रास्ता का निकाला हुआ गाना है, काफ़ी अच्छे अच्छे गाने हैं और ये मूवी भी काफ़ी अच्छी मूवी है। हम एक बार फिर चले चलते हैं ये हरियाली और रास्ता।

ये हरियाली और रास्तां नेकन जी ट्वीन सस्ता का मूवी है, मनोज कुमार माला सिला ने काम किया है। चलो एक गीत और है, बहुत ही बढ़िया गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है, तेरी याद दिल से भुला ना सकूंगा, करोड़ों का दिल जीतने वाला, मिलियंस ऑफ हार्ट, मुकेश का गाया हुआ गाना है। चलो हम सब मिलकर सुनते हैं, हरियाली और रास्ता का ये निकाला हुआ गाना है, नेकन ट्वीन सिस्टर का है। जे ये फिल्म बिना देखे से उसे देख सकता है, काफी अच्छी फिल्म है, मूवी।

0: से
1: जी हाँ दोस्तों, तेरी याद दिल से बुला ना सकूंगी, मूवी हरियाली और रास्ता नहीं कंती। द मिलियन ऑफ आर्स नाइट मुकेश की आवाज थी, शंकर जयकिशन का म्यूजिक थे, एक आखिरी गाना है फिल्म हरियाली और रास्ता का, हम सब मिलकर सुनते ही परवानों की रात। आशा भोसले इस गाने को गाया है, नहीं कहते तो इस शस्त्र का है।

सिले वालों की सेवा में सादर सा प्रेम नमस्ते आदाब राम राम सत श्री अकाल। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है वीफी रेडियो और इंटरनेट रेडियो। घड़ी पर देखूँ तो 11 का वक्त है एल एफ यू और मैं अपना प्रोग्राम पहले ही एक घंटा पहले शुरू कर रहा हूँ। शायद आपको रिक्लाम में पता चला होगा कि मेरे सामने इस वक्त बैठा हुआ श्रीमान राम राम भारत सिंह आपके लिए कोई नया जनाब नहीं है। और भैया राम राम भारत सिंह से हम एक इंटरव्यू का कार्यक्रम करेंगे। इस आशा उम्मीद के साथ आप अपने हिंदी प्रेमी जान पहचान से कह दिए होंगे और अगर नहीं कहे हैं तो बता देना कि आओवे के बारे में आओवे खत के बारे में एक नया रूप लिया है। और भैया राम भारत सिंह

तुझे क्या सुनाऊं, मैं दिलरुबा फ़ान हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा आप कार्यक्रम सुन रहे हैं। और भैया राम भारत सिंह तो चले गए अपना इंटरव्यू देकर। जो लोग इसके सिलसिले में कुछ जानना चाहते हैं, जैसे भैया राम भारत सिंह ने बताए हैं, तो आपको मिनिस्टेरी के पास इसके बारे में लिखना है, क्योंकि जैसे भैया ने कहा कि द्रियोन्नति नंदर तक लोग पा चुके हैं, और ये भी हो सकता है कितने लोग को नहीं मिला होगा, तो वे लोग मिनिस्टेरी के पास एक चिट्ठी हमेशा लिख सकते हैं।

मंदिर में से निकाले हैं लता जी और एवरग्रीन किशोर कुमार, आपको सुनाए फाउन के कार्यक्रम में ये गीत। चलिए हम तो समय से पहले आ गए लेकिन कार्यक्रम में है तो जो लोग तार करना चाहते हैं तार कर सकते हैं। नौ से इवन तक ग्री फाइव से अस्तक तु इन तक सेफ ने फिर तक या तो नौ से इवन तक ग्री तुम से अस्तक तु इन तक सेफ नन सेफ तक

गुनगुना है रही है भंवरे खिल रहे हैं कली कली, ये शानदार गीत आपको सुनाए हैं फिल्म आराधना में से निकाल कर। जी हाँ,

जादूगर तेरे नैना एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी की आवाज़ में आपको सुनाएगा ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। घड़ी पे देखूँ तो करीबन 10 मिनट बाकी 12 बजने में। चलिए हम पेश करते हैं ये शानदार गीत।

देखती हूँ जिधर, फिल्म हांगकांग में से। जी हाँ, फिल्म हांगकांग में से निकाले हैं ये शानदार गीत और हमने पेश किए है ओपन एयर के साज पर निगतिन त्वेयन सस्त का ये फिल्म है आशा जी की आवाज़ में। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं। ओ क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ इस तरह से।

सुन जा, ऐ घटा काली घटा, बस एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी हाथी मेरे साथी में से निकाले निगति एने से ही तो का ये फिल्म लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। अगला गीत हमने प्लेयर में आपको पता है हमने क्या रखे हैं, चलो सुनते हैं कि लता जी, जी हाँ लता जी की क्या मुसीबत है, लता जी के समझ में कुछ नहीं आ रहा है, चलो सुनते हैं, वो खुद कह रही है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, चलो सुनते हैं। मजा ही आ रहा है या नहीं, इस बात की मजा आ रहा है।

0: तो आपने सुने लता जी ने आपसे कहें कि उन्हें कितना मज़ा आ रहा है ये शानदार गीत हमने निकाला फिल्म राजा जानी में से नेक दिन तुम से ही फिर तक का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। और अभी हमने गीत चलाए थे हाथी मेरे साथी की, वो भी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का है, ये भी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का है। जी हाँ, चलो सुनते हैं ये रोमांटिक ड्यूएट सॉन्ग इस तरह से।
1: हल्की हल्की मुलाकातें थी

0: ये टाइटल सॉन्ग हम आपको सुनाएं, कुछ ना कहो, साधना सरगम और अभिष जी नहीं, साधना सरगम और शान, साधना सरगम और शान, शंकर एहसान लोई के साज पर यह टाइटल सॉन्ग आपको सुनाया गया। चलिए अगला गीत हम चला रहे हैं, फिल्म 10 नंबरी तो आप देखे होंगे, मनोज कुमार की फिल्म है, मुकेश जी की आवाज़ में और लता जी। चलो सुनते हैं, इन दोनों को कितना दर्द है मुझे भी नहीं पता, मिलकर सुनते हैं।
1: मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है
0: इतना?
2: अच्छा,
1: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती,
2: बाप रे,
1: सारा दिन तड़पती हूँ, सारी रात जगती हूँ, जाने क्या हुआ मुझको।

हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर गीत हम आपको सुनाए हैं लता जी और मैथ्यू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। आपने बीच बीच सुने होंगे यह गीत कि दर्द मिटने का क्या दवा है, क्या सुझाव है, क्या आदफिस है, बस गले में रस्सी बांध लेना और खींचवा लेना। बहरहाल ये मज़ेदार गीत हम आपको सुनाए ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो ते पे सत्ता।

मैं आग दिल में लगा दूंगा एवरग्रीन किशोर कुमार फिल्म सत्ते में सत्ते पे सत्ता में से निकाल कर आर डी बर्मन के साज पर हमने ये गीत चलाए हैं। चलिए आप ही हैं और मैं भी हूँ और चलो हम आपको ये गीत सुनाते हैं इस तरह से। और फिल्म फिल्म फिल्म फिल्म शिकार में से निकाल रहे हैं नेगंतिन अख्तन सस्त 1968 का ये गीत है। शंकर जयकिशन के साज पर

तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले, फिल्म शिकार में से निकाल लेने के दिन। अख्तन से अस्तक का ये गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में हमने आपको सुनाए हैं। चलिए, जानी दुश्मन वो भूत अख्तक फिल्म आपने अवश्य देखे होंगे, संजीव कुमार का। जानी दुश्मन में से निकाल रहे हैं, जी हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। लता जी चलिए आपको सुना रही है इस तरह से फिल्म जानी दुश्मन, निगेटिव नई खनन से 79 का ये गीत।

0: लता जी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर आपको सुनाए नीक दिन नीक नसीब का ये गीत फिल्म जानी दुश्मन में से निकाल कर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है
1: हाय राम।

0: Solliciteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: www.vahonfm.nl पर आप चुन हैं जो लोग चुन के मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। तो चलिए आपका स्वागत करते हुए हम आपको सुना रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है, बस सुनिए। उदित नारायण और अलका याग्निक जी, फिल्म धड़कन से निकाल रहे जी नहीं सॉरी फिल्म रा

कितना प्यारा है ये चेहरा, उदित नारायण जी और अलका याग्निक जी मिल के आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश किए। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। गीत हम तो रख दिए हैं प्लेयर में, लेकिन इसमें कितना आधा झूठ आधा सच, ये गीत के बारे में इस वक्त मुझे पता नहीं है, शायद भूल गए होंगे, लेकिन कितना सच कितने झूठ पता नहीं। लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनिए।

वाह क्या बात है, रविंद्र जैन के साज पर लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनाया गया फिल्म फ़कीरा में से निकाल कर 1976 निकली थी तक का ये गीत आधी सच्ची आधी झूठी। इसमें आधी सच्ची भी थी आधी झूठी, और दूध में पानी में जना कोई मलिक मान ने लिखा, लेकिन बहरहाल ये शानदार गीत हमने पेश की ओ फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एवरग्रीन किशोर कुमार, बहुत प्यारा गीत है, सुनिए इसे। जी हाँ अवश्य सुनना, ध्यान दीजिए।

क्यों वो तुम पे दिल है दीवाना, एवरग्रीन किशोर के किशोर कुमार जी की आवाज़ में हम पेश किए हैं ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम प्लेयर में रखे हैं लेकिन हमने भी चून नहीं किए हैं, चलो सुनते हैं, साथ मिलकर सुनते हैं कि मार गए मुझे तेरी जुदाई, चलो सुनते हैं। तख्त का ये गीत है।

अच्छा, जुदाई के बाद यही थी, हमें तो पता नहीं था। बहरहाल हमने पेश की ऑफर फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले सोनू निगम जी। सोनू निगम जी नीखन तीन सेशन सेस्त का ये गीत है, चलो सुनते हैं।

नदीम श्रवण के साज पर ये गीत हमने पेश की और हमने कहा नहीं कि तीन सेशन शस्त्र जी नहीं इस फिल्म है फिल्म सेशन नहीं गंधक का फिल्म जीत में से निकाले हैं नहीं कि तीन सेशन नहीं गंधक का ये गीत सोनू जी और अलका जी मिलकर नदीम श्रवण के साज पर ये लोग सुनाए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो रवि साहब का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का साज है और फिल्म है मेरी तुलसी मैं तुलसी तेरे आंगन की। फिल्म तो आपने देखे होंगे लेकिन वो टाइटल सॉन्ग हम नहीं चलाएंगे हम कोई और गीत चलाएंगे। हम चला गए एक दूसरा गीत रफ़ी साहब का और गाना में पता चलता है यही कि बंद हुई खिड़की रफ़ी साहब

अच्छा, तो ये बात है, बंद खिड़की रफ़ी साहब को कितना परेशान की, उन्होंने आपको बताया हो फरमान हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो अगर हम दोनों हाजिर हैं तो क्या ख्याल है।

मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आती थी, क्योंकि इसी सिगरेट और शराब की वजह से मैंने अपने पापा को खो दिया। अपने पापा की तरह मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती।

जान तुम्हें देंगे, ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं ओवर फॉर हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। चलो अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है अम्स्टरडम के रहने वाला श्रीमान हीरा प्रसाद जोधा और उनकी प्यारी धर्मपत्नी युवती जोधा जी के लिए। तो भैया हीरा प्रसाद जोधा युवती जी, आप दोनों के लिए शुभकामना के साथ चलिए ये शानदार गीत हम चला रहे हैं। जी हाँ, ये शानदार गीत हम पेश कर रहे हैं इस तरह से।

ए चांद की जेबाई, रफ़ी साहब की आवाज़ में हम आपको सुनाए हैं। फिल्म छोटी सी मुलाकात में से निकाल कर निकली सेवन से हस्तक का ये गीत शंकर जय किशन के साज पर। और ये गीत हमने पेश की आम्स्टरडम, आम्स्टरडम के रहने वाले श्रीमान हीरा प्रसाद जोधा जी के लिए और उनकी धर्मपत्नी मुवती जोधा के लिए शुभकामना के साथ एक शुभ दिन पेश करते हुए ये शानदार गीत चला। और हीरा जी और वती जी, आप दोनों के भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत ये पेश करने वाले हैं, वो है ये गीत। चलो देखते हैं ये प्यारा गीत। हाँ, लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर।

मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में निख दी इन सेवंत 1971 का ये गीत हमने पेश की। जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये गीत सुनाऊँ? हाँ, सुनते हैं।

फिल्म धड़कन में से निकाल कर ये टाइटल सॉन्ग हम आपको सुनाए हैं। अभिजीत जी और अलका याग्निक जी की आवाज़ में हमने चलाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये है, कौन ये गीत नहीं गाया होगा, जानी पहचानी गीत है, जानी पहचानी आवाज़ है, जानी पहचानी फिल्म है और जानी पहचानी म्यूजिक डायरेक्टर है। निकिता ट्विन से इफ तक का ये गीत है, टाइटल नहीं बताएंगे लेकिन सुन लीजिए।

कांटा लगा हुआ। लता जी आपको सुनाए हैं, फिल्म समाधि में से निकाले हैं निखिन त्वी से का ये गीत और हमने आपको सुनाए। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये है, जी हाँ बारिश तो नहीं हो रहा है बाहर, लेकिन फिर भी हम यही कोशिश कर रहे हैं, नहीं यही आशा कर रहे हैं कि थोड़ी बारिश हो, क्योंकि कहीं आग लगी है, कहीं दरार फाट गया, कहीं कुछ हुआ है, सोमर का ज़माना है तो ये सब तो होगा ही। बहरहाल बारिश नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी सुनते हैं ये शानदार गीत।

झूमता सावन देखो आया। अच्छा सावन का महीना तो है ही, ऑगस्टस का महीना सावन का महीना है, लेकिन बारिश तो नहीं हो रहा है। बहरहाल ये गीत हम आपको सुनाए हैं फिल्म दो खिलाड़ी में से निकाल कर निकली सस सही का ये गीत उषा खन्ना के साज पर फिल्म का गीत हमने पेश किया। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और ये गीत के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। ये फिल्म है, नया फिल्म है, अरे नया गोविंदा की फिल्म है, गोविंदा रवीना टंडन के फिल्म अनारी नंबर वन, जिसका म्यूजिक डायरेक्टर है कुक्कू कोहली। हाँ कुक्कू कोहली, और गाने वाले हैं अभिजीत और यशविंदर नरोला जी, ये दोनों मिलके आपको सुना रहे हैं। लेकिन ये फिल्म जो है, ये फिल्म के बनाने वाले यानी पैसा लगाने वाली है अरुणा ईरानी, वो अपने एक्ट्रेस है ना अरुणा ईरानी, अरुणा ईरानी ये फिल्म को प्रोड्यूस किए यानी पैसा लगाया है। तो सुनिए एक मज़ेदार गीत इसी फिल्म से हम निकाल कर आपको सुना रहे हैं इस तरह से।

हाँ, क्या बात है। हीरो नंबर वन में से विनोद राठौर और पूर्णिमा आपको सुनाए हैं। कुछ चटपटा चुटकुला मजेदार गीत हम आपको सुना रहे हैं। शायद अभी अपने आप पर लौट आए।

अब ये तो आप ही जाने कि तुमने किसी से कभी प्यार किया या नहीं। मैथ मुकेश और कंचन जी मिलके आपको सुना है फिल्म धर्मात्मा में सेफ निकन तो का ये गीत। हाँ, जाते वक्त थोड़ी से आपको ये भी सुना दूँ जी। हाँ, इस तरह से

यहाँ तक था ये कार्यक्रम जो मैंने पेश की आज दोनों निर्दाक्ष क्रिस्तस के कार्यक्रम में। इस उम्मीद के साथ आपको अवश्य अच्छा लगा होगा। और तार किए थे, देखते हैं, आमस्टरडम के रहने वाले श्रीमान हीरा प्रसाद और वती जी, उनकी धर्मपत्नी, आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और तार तो नहीं कर सकी उत्तराखंड के रहने वाली बिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऐप तो की कि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, लेकिन आप व्यस्त थे इसलिए गाना चलाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप रास्ते में हैं। बहरहाल आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम पेश हुआ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा और आज की इंटरव्यू भी आप सुने हैं। हम भैया जॉनी से बात करेंगे और दिरक्सी से कि शायद एक बार उसे दोहराया जाए क्योंकि कितने लोग नहीं सुन पाए हैं, दूसरे लोगों से सुने हैं लेकिन पूरा समझ में नहीं आया। बहरहाल मेरे बाद आप सुनोगे विज्ञापन और न्यूज़ और उसके बाद बाकी का कार्यक्रम हमारे सहयोगी आपके सेवा में रहेंगे। मैं आपसे मिल रहा हूँ आने वाला जोंदा यहाँ बृहस्पतिवार को गीत गजल के कार्यक्रम में 8 से 10 बजे के दरमियान और भैया यूसुफ के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आप सबको एक शुभ शाम पेश किया जा रहा है। मैं आपसे मिल रहा हूँ आने वाला जोंदा को, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: Agar ish karo to adabe bhi wafai bhi sikho. Agar ish karo to adabe bhi wafai bhi sikho. Ye chand din kar bekarari mohabbat nahi hoti. Jagne ki bhi jagane ki bhi aadat ho jaye. Kaash tujhko kisi shayar se mohabbat ho jaye. तो हम तुरंत चलते हैं एक गाना की ओर दोस्तों, और वो क्या होता आप खुद ही सुनिए।

मोहब्बत और मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत जो है वो बहुत बड़ा काम का चीज़ है और कभी कभी मोहब्बत में बहुत बहुत गलतियाँ हो जाती है दोस्तों। और गलतियाँ तो हमारे लोग का भी एक हिस्सा है हमारे दोस्तों। तो आज हम आप लोग को कुछ प्यार भरी शायरी सुनाएंगे, कुछ गाना हम सुनाएंगे एक घंटे के लिए, और उसके बाद तो हमारा प्रोग्राम को और आगे को हम बढ़ाएंगे। कहते हैं तेरे ख्याल में जब बेख्याल होता हूँ, तेरे ख्याल में मैं जब बेख्याल होता हूँ, जरा सा देर को ही सही बेमिसाल होता हूँ। थोड़ा से देर होइगे बाकी फिर भी बेमिसाल होता हूँ। तो हम चलते हैं दोस्तों। मुझे नींद न आए, आपको आते हैं, आपको क्या आते हैं, अभी क्या आएंगे दोस्तों, लेकिन आएंगे जरूर। हम चलते हैं एक पुराना नंबर की ओर।

और मुझे नींद न आए, और मुझे नींद न आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का ये फिल्म दिल मूवी का नाम है दोस्तों। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने ये गाना को गाया है। और हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, और यहाँ से हम अपना प्रोग्राम को और आगे को चलाएंगे और सुनाएंगे, और कुछ शायरी एक दो बीच बीच में हम कर देंगे। और हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, हम चलते हैं, और ये दर्द की बात है। और दर्द में क्या होता है दोस्तों, दर्द में आंस गिर जाता है, दिल रोई पड़ता है, दिल धड़क जाता है। और जब दिल धड़क जाता है तो क्या होता है, आप खुद ही सुनिए।

और न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, और जो अगर छू लिया तो उसके आगे आपको क्या होता है दोस्तों, ये मैं क्या करूं, आप तो खुद ही जानते हैं। और कहते हैं होठों पर मोहब्बत की फसाना नहीं आती, होठों पर मोहब्बत की फसाना नहीं आती, साहिल पर समंदर की खजाना नहीं आती। और आगे को हम चलते हैं दोस्तों कि कहते हैं इश्क मोहब्बत दीवानगी ये बस लफ्ज ही थे, जब तू मिला तब इन लफ्जों को मैंने मिले। और दोस्तों ऐसे ऐसे कुछ शेरे आज आप लोग को हम जरूर सुनाएंगे, और हमें यही आशा है कि आपको जरूर अच्छा लगेंगे। कहते हैं फूल खिलते हैं बहारों का शमा होता है, फूल खिलते हैं बहारों का शमा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवान होता है। दिल की बातों को होठों से नहीं कहते, ये फहसाना तो निगाहों से बयान होता है। यस मींस रोगेर, फूल खिलते हैं बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में तो प्यार जवान होता है। दिल के बातों का होठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयान होता है दोस्तों। और इस बयान में हम आप लोग के चलते हैं सुबह से लेकर क्या होता है, खाना तो नहीं होता है दोस्तों, और कुछ होता है, वो क्या होता है आप सुनिए।

हम चाहते हैं सिर्फ प्यार करो दोस्तों, और हम अपना प्रोग्राम को और आगे लेकर चलते हैं। हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों की कहते हैं, प्यार करने वालों कहते हैं कि कब तक वो मेरे होने से इनकार करेंगे, कि कब तक वो मेरे होने से इनकार करेंगे, खुद तो करके वो एक दिन मुझसे प्यार करेंगे, प्यार की आग में हम उसे उसको इतना जलाएंगे कि सारी दिन हमसे प्यार ही करते रहेंगे। यस मेंस, आज हम प्यार के मूड में हैं, इसीलिए प्यार के कुछ शायरी हो जाए और कहते हैं कि एक पल मैं जो आकर गुजर जाऊं, एक पल में जाकर गुजर जाए, ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं, प्यार कहते हैं दुनिया जिसे, एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं दोस्तों। तो ये सब बात शायरी में लोक लिख के धर दिया है, और आज अपनी जिंदगी के कुछ बातें हम आप लोग को सुनाएंगे, और वो क्या है दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए।

जिंदगी में और मेरे जिंदगी में जब आप आए हो तो बहार बन के आए हो और फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गाना है दोस्तों जो आपके हमने सुनाया है और हम चलते हैं और आगे को दोस्तों। मुझे उस जगह से भी मोहब्बत हो जाती है, आप तो जानते हैं जब लोग कभी मस्त हो जाते हैं तो वो जगह नहीं छोड़ता है, जगर उसको कुछ सोचना है तो जाकर वहाँ पर बैठ जाता है और बैठ के और जैसे दोस्तों जब हम कुछ लिखते हैं तो मुझे वो स्पेशल जगह होता है जहाँ पर हम बैठ के कुछ लिखते हैं। ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जब जो प्यार के मूड में होता है तो वही जगह वो खोजता है और कहते हैं मुझे उस जगह से भी मोहब्बत हो जाती है जहां बैठकर एक बार तुम्हें सोच लेता हूं। जी हां दोस्तों, और कहते हैं इस दुनिया में लाखों लोग रहते हैं, कोई हंसता है दोस्तों तो कोई रोता है, पर सबसे सुखी वो होता है जो शाम को दुई बोरल मार के सोता है। एक शायर हुए के भैया ये हंसते हुए सिर्फ प्यार भरे नहीं लेकिन हंसते हुए नजरे करम मुझ पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं, नजरे करम मुझे पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं, मुझे इतना न पिला इश्क के जाम कि मैं इसके जहर में आधी हो जाऊं। दोस्तों हम चलते हैं कि अगर आपके दिल ने किसी चुरा लिया है तो ये गाना आपको जरूर सुनना चाहिए।

और चुरा लिया है क्या भैया, दिल के बात होता है, दिल के बात होता है हमारे प्यारे प्यारे और सुनने वालों। और दिल बेस्टमैन से हम चलते हैं एक रीमिक्स गाना की ओर, यानी कि रीमिक्स भी बजाना चाहिए और तुम दिल के धड़कनों में रहते हो, उस गाना की ओर जाते हैं हम दोस्तों। अभी हम वापस आ जाएंगे।

बस तुम दिल की धड़कन में और रहते हो रहते है। अलका का ये गाना है और इस फिल्म में काम किया है अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी ने इस फिल्म में काम किया है हमारे दोस्तों। और हमारे प्यारे दोस्तों ये गाना है जब बारिश आता है तो ये गाना सुनने में और अच्छा लगता है। हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों फिल्म का नाम है सूर्यवंशी, अक्षय कुमार कैटरीना कैफ के, और इस गाना में इस फिल्म में यानी गाना को गाया है उदित और अलका ने। आओ मिलकर सुना जाए तो अभी हम वापस आ जाएंगे।

और दोस्तों टिप टिप करता और क्या करता है टिप टिप भैया, बारिश होता है टिप टिप, और जब बारिश होता है तो क्या करना चाहिए दोस्तों, आपके तो खुद मालूम होगा। हम चलते हैं और आगे को, और बचना ऐ हसीनों, बचना किससे है दोस्तों, उससे बचना है जो दिल के लुटेरा होता है उससे बचना।

और आम किया जाने से हमारा भी यहाँ पर मन बहुत चाहते हैं दोस्तों, और हम इस प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं और कहते हैं सिखवा करने से गए थे और इबादत से हो गई, सिखवा करने गए थे और इबादत से हो गई, तुझे भूलने की जिद थी मगर तेरी आदत से हो गई। और दोस्तों आज हम आप लोग को और तक सैफ तक नीख तक का कुछ गाना सुनाएंगे दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए उदित नारायण एंड अलका याग्निक।

आई मेरे, और क्या क्या आप लोग सुनते हैं, अलका और उदित नारायण का ये सॉन्ग है दोस्तों। और कहते हैं कि देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम में, देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, हम होश में आने वाले थी कि तुम फिर से मुस्कुरा बैठे। नोकमाल्स नोकीर बेस्टल इस्तरात, देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, हम होश में आने वाले थी कि तुम फिर से मुस्कुरा बैठे। दोस्तों तो आज आप लोग को हम कुछ शायर और शायरी की और मोहब्बत भरी लवली सॉन्ग्स आप लोग को लिए हम चलाएंगे। और एक और हो जाए, मरे तो लाखों होंगे तुझ पर, मरते तो लाखों होंगे तुझ पर, मैं तो तेरे साथ जीना चाहता हूँ। दोस्तों और चला जाए और ये गाना कोर की पूछो जरा पूछो।

ये दिल लगाने की सजा है दोस्तों। राजा हिंदुस्तानी 1966 भैया नहीं खंती ससन नहीं खंत का ये गाना है। और पूछो जरा पूछो अलका और कुमार शानू का, आज हम आप लोग को कुछ गीत और सुनाएंगे हमारे प्यारे दोस्तों और मोहब्बत भरी सॉन्ग समाज आप लोग को और सुनाते ही रहेंगे। हाल ऐसा है मेरा कि तेरा ही गले लगकर, हाल ऐसा है मेरा कि तेरा ही गले लगकर, तेरे ही शिकायत करनी है तुझसे। और दोस्तों प्यार भरी और हम आज आप लोग को सॉन्ग सुनाते ही रहेंगे हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों। और शायरी के और कुछ शायर के बातचीत भी, कुछ शायरी भी आप लोग को हम सुनाते ही रहेंगे हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों। और कहते हैं कि यहाँ पर अलका फीना गई है दोस्तों और उदित नारायण।

और दोस्तों, आप जहां भी हो, चाहे जौन देश में हो, हमारा प्यार आपके पास पहुंचे। और वो कहते हैं, वो जवाब मांगती है कि मुझे भूल तो नहीं जाओगी। समझ गया दोस्तों, एक कहते हैं कि वो जवाब मांगती है कि मुझे भूल तो नहीं जाऊंगी। जवाब मैं क्या दूं दोस्तों, जब सवाल ही पैदा नहीं होता है। समझ गए ना हमारे प्यारे दोस्तों, कि ये कहते हैं कि वो जवाब मांगती है कि मुझे भूल तो नहीं जाओगी, जवाब मैं क्या दूं जब सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमारे प्यारे दोस्तों, ये बात है कि कहते हैं कि अपनों के बीच बेगाने हो गए हैं, अपनों के बीच बेगाने हो गए हैं, प्यार की लंबी अनजाने हो गए हैं, जहां पर फूल खिलते हैं कभी आज वहीं पर वीरान हो गए हैं दोस्तों। और ये सब बात कब होता है, जब प्यार में टकरार होता है। तो वो कहते हैं, अपनों के बीच बेगाने हो गए, प्यार के लम्बे अनजाने हो गए, जहां पर फूल खिलते थे कभी आज वहीं पर वीरान हो गए हैं दोस्तों। और हम चलते हैं एक गीत की ओर। आ

हमारा चाप लोग को लिए और हम कुछ बना कर लाए हैं कि कहते हैं मोहब्बत का एहसास। हमारे दोस्तों, हमारे चाहने वाले, हमारे प्यारे प्यारे, हमारे लोफली लोफली लोग, और कहते हैं कि मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों को हुआ था। मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने किया था और मुझे हुआ था। समझ गए ना दोस्तों कि मोहब्बत का एहसास तो हम दोनों का हुआ था, फर्क सिर्फ इतना था कि उसने मोहब्बत किया था और मुझे हुआ था। दोस्तों, ये तो बात भी होता है ना प्यार में कभी कभी, और प्यार में ये भी होता है दोस्तों कि रूह की जगह तुम होते मेरे जिस्म में, रूह की जगह तुम होते मेरे जिस्म में, जब तुम छोड़कर जाते तो हम मर जाते। और हम चलते हैं और एक प्यार भरी गीत की ओर, आओ मिलकर सुना जाए।

प्यारे दोस्तों, हम आप लोग को प्यार भरी गाना चलाएंगे और आगे का प्रोग्राम हम बढ़ाते हैं फॉर ओनली द लवर्स के लिए। इस गाना को और शायरी हम यहां से चलाते हैं, ओनली लवर्स दोस्तों। और हम यह कहते हैं कि होशे हालात पे कबूल तो कर लिया मैंने, होशे हालात पे कबूल तो कर लिया मैंने, उन्हें देखकर फिर से होश खो गए तो मैं क्या करूं दोस्तों। कि होशे हालात में कबूल तो कर लिया मैंने, उनके देखकर फिर होश खो गए तो क्या करूं हमारे दोस्तों। मुझे नहीं मालूम है प्यारे लोगों, मुझे नहीं मालूम है वो पहली बार कब अच्छा लगा, मुझे मालूम नहीं है कि पहली बार वो मुझे कब अच्छा लगा, मगर उसके बाद कभी बुरा भी नहीं लगा हमारे दोस्तों। और हम चलते हैं और एक गीत की ओर, कहते हैं मुझे जीने नहीं देते हैं याद तेरे।

और मुझे जीने नहीं देती। और ये याद तेरी दोस्तों, और आज हम आप लोग को श्री फॉर द लवर्स के लिए कुछ शायरी यहाँ पर हम और आपको सुनाते हैं कि कहते हैं कि प्यार वो नहीं, प्यार वो नहीं हमारे प्यारे दोस्तों, प्यार वो नहीं जो हासिल करने के लिए कुछ भी करवा दे, प्यार वो नहीं जो हासिल करने के लिए कुछ भी करवा दे, प्यार वो है जो उसकी खुशी के लिए अपना अरमान छोड़ दे। यामिन से प्यार वो नहीं है, प्यार वो नहीं है जो हासिल करने के लिए कुछ भी करवा दे, प्यार सिर्फ वो है जो उसकी खुशी के लिए अपना अरमान छोड़ दे। फॉर द लवर्स। और दूसरा है मुस्कुराते हैं लब, मुस्कुराते हैं लब आंखों में नमी है, मुस्कुराते हैं लब आंखों में नमी है, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास, बस एक आपके कमी है दोस्तों, आपकी कमी है। और सुना जाए अब क्या है,

दीवाना और मैं तेरा दीवाना। दोस्तों और यहाँ से कुछ प्यार भरी शायरी आप सबके लिए हम यहाँ से चलाते हैं। कभी कभी लोग जो है वो कहते हैं कि वो प्यार करते हैं, लेकिन उसका उसका एहसास उसको नहीं होता है कि अब क्या होगा और आगे को क्या होता है। तो यहाँ से हम बताते हैं कि दिल कहता है कि तुमसे बहुत बातें करूं, दिल कहता है कि तुमसे बहुत बातें करूं, पर डर है इस बात का, डर है इस बात का कि तुम्हें कोई कोई बात गलत ना लग जाए। कभी कभी होता है दोस्तों कि बात करने तो चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि कहीं हमारा बात इसको कुछ गलत ना लग जाए, तो वो बात करने में घबराते हैं। कि दिल कहता है कि तुमसे बहुत बातें करूं, पर डर है इस बात का कि तुम्हें कोई बात गलत ना लग जाए। और दूसरा है दोस्तों, हम इश्क के वो मुकाम पर खड़े हैं जहां दिल किसी और को चाहने चाहे तो गुनाह लगते हैं। दोस्तों जब किसी से इतना प्यार हो जाते हैं तो जब किसी और आपको देखते हैं तो और या आप किसी को देखते हैं तो अपने आप को आपको फूल करने लगते हैं कि हम इश्क में वो मुकाम पर खड़े हैं जहां दिल किसी और को चाहने तो गुनाह लगते हैं। दोस्तों हम चलते हैं एक प्यार भरी गीत की ओर।

और दोस्तों क्या किया और क्या किया, आज हम आप लोग को कुछ नया और पुराने गीतों से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे दोस्तों। और हम चलते हैं अगला गीत की ओर। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा एक गीत है जो नैतिल के लता जी और उदित नारायण को गाया हुआ गीत है। इस फिल्म का नाम है वीर जरा, शाहरुख खान और प्रीति सिंधा का ये गीत आप लोग सुना जाए।

और ऐसा देश है तेरा। जितने लोग दुनिया पे है हमारे प्यारे सुनने वालों, अपना देश सबके प्यारा होता है, चाहे आप भारत में हो या सूरीनाम में हो या पाकिस्तान में हो या जहां भी हो, अपना देश सबका प्यारा है। चाहे वो देश आपका जैसा भी हो, लेकिन तुम्हारा अपना ही देश है। और चलते हैं हम और आगे को, सातो जन्म में तेरा ही रहेगे। फिल्म के नाम है दिलवाला, कुमार शानू और अलका याग्निक इस गीत को

सुनने वालों, सातों जन्म तक हम तेरे रहेंगे, ये क्या मुमकिन है? सात जन्म तक किसके साथ रहे? एक जन्म में भैया कहीं कहीं उल्टा सीधा हो जा है, सात जन्म में भला क्या होगा? सोचो तो, हम चलते हैं एक गीत की ओर। औ है खलनायक, खलनायक की ओर, और पलकी में होगे सवार, पलकी में होगे सवार। आओ सुना जाए।

पालकी में होके और सवार चलिए। कल का यानी फिल्म का नाम है खलनायक, जिस फिल्म में माधुरी दीक्षित संजय दत्त ने काम किया है और गीत को

और ऐसी दीवाननी और एक तेरा नाम हमने लिख दिया अलकाई याग्निक और विनोद राठौड़ ऋषि कपूर देविया भारती का ये फिल्म है ऐसा दीवानी। फिल्म का नाम है दीवाना। और हमारे प्यारे सुनने वालों, आज हम आज कुमार शानू के गीत भी आप लोग को सुनाएंगे और वो है ये चांद कोई दीवाना है, ये चांद कोई दीवाना है, ये भी कुमार शानू और अलका ने इस गीत को गाया है।

चांद कोई दीवाना है और ये चांद कोई दीवाना है। छुपा रुस्तम फिल्म का नाम है और इस गीत को हमने अपने प्यारे लोगों के लिए चला दिया है। मोहब्बत भरी गीतों से आज हम आप लोग को फिर कुछ मनोरंजन को आप प्राप्त करेंगे। और हम चलते हैं, कोई पागल प्रेमी होता है भैया, कोई श्रेक होता है और कोई पागल होता है। कविता कृष्णमूर्ति का और सबीर कुमार का यह गीत है जिस फिल्म में गोविंदा ने काम किया है और देविया भारती ने। और इस गीत को बोल है तू पागल प्रेमी और आवारा।

दोस्तों, और ये गीत क्या होगा दोस्तों? ये कुछ प्यार भरी गीत है और ये गीत है झुकी झुकी नजरों तेरी कमाल। झुकी झुकी नजरों तेरी कमाल की ओर हम जाते हैं।

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimumsummerfestival.nl.
1: बस दोस्तों, आप लोग को हम कुछ प्यार भरी मस्त भरी गीतों से आज भी आप लोग को हम पुराने गाने कुछ भी नए गाने से आपको हम सेवा करेंगे। चलते हैं भीगी रात नई डिफेंस ऐसा का ओल्ड सॉन्ग परमाश्री मोहम्मद रफी करोड़ों का दिल चुराने वाली नाइटिंगेल लता मंगेशकर आशा भोसले इस फिल्म में मीना कुमारी काम किए हैं और अशोक कुमार। आओ मिलकर सुना जाए।

और भीगी रात लेखक 65 का ये फिल्म है दोस्तों। हम और आगे को लेकर अपना प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हम अपने गीतों को और आगे को बढ़ाते हैं। हम चलते हैं, यूं ही तुम मुझसे बात करते हो, अगर बात करना है तो दिल से करो, ऊपर मन से करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं। नई हंसी जीवन का ही फिल्म है, फिल्म के नाम है सच्चा और झूठा, जिसमें राजेश खन्ना मुमताज ने काम किए हैं। आओ सुना जाए।

और क्या बात करती हो राजेश खन्ना का मुमताज का ये रोमांटिक सॉन्ग यानी फिल्म थी। और दोस्तों आज हम आप लोग को फिर भी रोमांटिक प्यार भरी गीतों की सॉन्ग आपके हम सुनाएंगे और रेडियो फहम के माध्यम से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं। और दोस्तों देखा जाए और कितनी दिनों बाद आज हम आप लोग को फिल्म पकीसा का एक गीत सुनाएंगे। और ये फिल्म एक सुपरहिट फिल्म थी जिसमें मीना कुमारी, राजकुमार, अशोक कुमार ने काम किए थे। और आज हम आप लोग को इस गीत को कितनी दिनों बाद सुनाएंगे। नेहती हों का ये सॉन्ग है।

और ये गीत फिल्म पकीसा का निकाले हुए गीत सॉन्ग हम आप लोग को कितनों दिनों बाद आप लोग को हमने सुनाए हैं। और दोस्तों हम और आगे को बढ़ते हैं, कहते हैं कि ये हम तुम चोरी से और चोरी में छिछोरी हो जाते हैं और तोरी में क्या क्या ना हो जाते भैया, चोरी में क्या क्या न हो जाते हैं। और ये है फिल्म धरती कहे पुकार का ये सॉन्ग है जिचिंदर नंदा और नाइटिंगेल लता जी और करोड़ चुराने वाला मुकेश माइती मुकेश का ये सॉन्ग है। आओ सुना जाए।

और ये तुम जो हम तुम चोरी से और बने भी है कौची एक डोरी से जइयो कहाँ ले हुजूर। उसके बाद में हमारे दोस्तों आप लोग जानते हैं हमारा प्रोग्राम का नाम है सच्चाई मजेदार समाचार, जो हर शुक्रवार को शाम को 6 से 7 बजे तक हम 6 से 9 बजे रात्रि तक चलाते हैं, मंगलवार को 5 से 7 बजे तक और रविवार को दिन में 1 बजे हम अपना जाने प्रोग्राम को चलाते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं कौन दिशा से मैं लेके चला रे भतुया, नदिया का पार नदिया के पार फिल्म के नाम है। हेमलता जसपाल सिंह इस गीत को रविंदर जैन के सॉन्ग में और इस गीत को गाया है, एक बहुत मस्त भरी प्यार भरी गीत है। फिल्म के नाम है नदिया के पार नेह दिन होंदित एंतुई तख्त का ये गीत है। और आओ मिलकर ये गीत को सुना जाए, ये गीत हमें बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। हमें ही आशा उम्मीद है कि आपको भी ये गीत अच्छा जरूर लगेंगे। आओ सुना जाए।

0: और मन ने भरमाई और जाकेरी बतुया कौन दिशा में लेके चला री बतुया। नदिया कपारी फिल्म का नाम है। हेमलता इस गीत को गाया है और हम चलते हैं दोस्तों अपना प्रोग्राम लेकर आगे। और ये है इस फिल्म किशोर जी का गाया हुआ ये सॉन्ग है और आओ मिल का सुना जाए कौन सा फिल्म का गीत है अभी हमें पता चली गई तो हम आप लोग को बताएंगे दोस्तों कि ये कौन सा फिल्म का ये गीत है। लेकिन इसमें काम किया है लीना चंद्रवरकर और संजीव कुमार। गम का फसाना लेना, गम का फसाना लेना। तो आओ सुना जाए ये कौन सा गम है और कौन सा फसाना है। हमारे दोस्तों ये रोमांटिक मूवी का सॉन्ग है, क्लासिक सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाते हैं। आओ सुना जाए।
1: हाय गम का फसाना बन गया अच्छा
2: अच्छा जी
1: एक बहाना बन गया अच्छा
2: अच्छा

और गम का फसाना बन गया। अच्छा, किशोर जी का गाया हुआ ये सॉन्ग है। हमारे दोस्तों, हम अगला गीत की ओर बढ़ते हैं और अगला गीत क्या होगा, आओ मिलके सुनाई गोरी तेरी गाँव बड़ा प्यारा। और कभी कभी जो गोरी लोन होता है वो गाँव में रहता है, देहात में रहते हैं, और ये गीत भी है, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा है। तो आओ सुना जाए इस गीत का। फिल्म का नाम है चित्त चोर नीघंती ससी का। ये गीत है, यूसुफ दास ने इस गीत को गाया है।

गुर गोरी तेरा गाँव ना सिर्फ तेरा गाँव तुम भी बहुत प्यारा है, तुम भी बहुत प्यारा है गोरी, जैसे तुम प्यारा है ऐसे तुम्हारा गाँव भी प्यारा है। और इस फिल्म का नाम है चित्तचोर, जिसमें शरीना वह्याप ने काम की है। और इसके बाद हम पुरानी गीतों की भान प्रोग्राम लेकर चलते हैं। सॉन्ग के नाम है दिल विल प्यार व्यार, अरे मैं क्या जानू भैया हम तो छोटा लड़का है। फिल्म के नाम है शागिर्द नहीं हती जीवन सस्तक का। और ये प्यार यार कुछ जाने भैया, अगर ये प्यार यार आपको मालूम है तो हमें आप लोग जरूर बतला देना, हमें भी मालूम नहीं है प्यार क्या होता है। तो आओ इस गीत से सुना जाए तो शायद मालूम हो जाएगा।

और ये दिल विल प्यार यार जॉनी के भी मालूम ना है दोस्तों, अगर आपको जो मालूम हो तो हमें जरूर बता देना कि ये दिल उल प्यार यार क्या होता है। और अगर आपकी दिल जो है जिसमें कुछ लिखा नहीं है, कोरा है, किसी आप के दिल में नहीं बसा है, तो ये गीत आपको सुनना चाहिए।

आज रपट जाई हो तो हमें ना उठाई हो। एवरग्रीन किशोर कुमार और आशा जी निकती तीन तख्तक में से निकाले फिल्म नमक हलाल में ये शानदार गीत बप्पी लहरी के साज पर। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आपका हृदय से स्वागत है। तो लीजिए, आपका स्वागत करते हुए हम आपको सुना रहे हैं ये शानदार गीत इस तरह से। मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, करोड़ों के दिल पर राज करने वाला।

माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी दोनों मिलके आपको सुनाएं, याद रहेगा। आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका हृदय से स्वागत है। जो लोग चुनकी मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए, क्या ख्याल है? जी हाँ, क्या ख्याल है लता जी? और सुनिए ये ख़त के सिलसिला लता जी की मुखारविन से। चलिए लता जी आपको सुनाते हैं ख़त में उन्होंने क्या लिखा, क्या जवाब पाया, गया या नहीं गया, पोस्ट ऑर्डर ने भेजा या नहीं भेजा। चलिए लता जी आपको सुनाएंगे।

ने सनम को ख़त लिखा, और ये बहुत दुख की बात है, अफसोस की बात है कि ख़त तो भेजा गया लेकिन ख़त फिर वापस आ गया। ख़त का पता तो लिखा था लेकिन वो पता कहीं नहीं मिला। तो जाहिर है कि प्रेमी प्रेमिका की गीत होगी। शुभकामना के साथ चलिए हमने एक गीत चलाए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। अगला गीत है, बस सुन लीजिए, इस तरह से है।

लता जी की आवाज़ में फिल्म आदमी में से निकालने शकील बदायूनी की लिखी हुई गीत और हम आपको सुनाएं फिल्म आदमी में से निकाल कर फौन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर चलिए कुछ बदलाव लाते हैं इस तरह से।

किया यही प्यार है लता जी और किशोर कुमार जी फिल्म रॉकी में से निकाले हैं आरती बर्मन के साथ पर और पेश किया गया है ये कार्यक्रम में। चलिए क्या ख्याल है, आप भी हैं और मैं भी हूँ, मौसम के देखते हुए चलिए ये गीत।

0: तमो
1: लता जी और महेंद्र कपूर जी मिलके आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, इस तरह से हमने पेश की फिल्म धूल का फूल में से निकाल कर। जहाँ तक मेरा ख्याल है धूल का फूल बहुत लोगों ने देखे होंगे, बहुत प्यारी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म। सूत्रमेर से मीला जी आपका हृदय से स्वागत भी है, आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है।

0: रफ़ी साहेब बादशाह जी की ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं फौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में शंकर जय किशन के साथ पर फिल्म शतरंज में से निकाल कर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है? ये है माइत मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस,
1: तूने जब जब
0: फिल्म उपासना में से।

मैं मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस दर्पण को देखा फिल्म उपासना में से निकाले हैं और ये शानदार गीत हमने चलाए हैं। एवरग्रीन किशोर कुमार का क्या ख्याल है? प्यारी गीत

0: सी एवरग्रीन किशोर कुमार मेरी बिग बिगी से बहुत प्यारी नंबर हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में। उम्मीद है गीत आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम आपको एक गीत और सुनाते हैं, इस तरह से आ रहा है।
1: अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

0: और दिल देना ही पयाए और दिल लेना ही पयाए। तो हमारे दोस्तों हम चलते हैं अगला गीत की ओर, आओ मिलकर सुना जाए ये कौन सा गीत है हमारे सुनने वालों। सुपर सॉन्ग फन नहीं खती नहीं खनते रोमांटिक सॉन्ग
1: सर की जो सर से वो धी
0: द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू मेरे महबूबा सॉन्ग दीदे।

और तेरे चुने दिया दिल ले गई निकंतक का ये यानी कि हिट बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग जो आप लोग को हम सुनाते हैं। तो अगला गीत की ओर हम जाते हैं, रोमांटिक फुल सॉन्ग है और तेरी चुनरिया के बांध में हम जाते हैं। देखा तुझे तो क्या होता है, क्या होता है, दिल में कुछ मजलता है।

मालो तुझे तो मिट ना जाए। और दोस्तों और अगला नई खंता का रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग, यहां से जॉनी नंबर वन का प्रोग्राम हम चलाते हैं।

और क्या है हमारे यारो लवर्स के लिए बॉलीवुड सॉन्ग्स वन नीखंत रोमांटिक सॉन्ग है जो आप लोग को लिए हम चलाते हैं राजा हिंदुस्तानी।

जी कर देखता रहूं, इतना प्यारा तुझे कौन बनाया है? रब ने बनाया है हमारे यारो। ये जो रोमांटिक सॉन्ग है बॉलीवुड नेक्स्ट का, आप सुनिए।

और जाती हूँ मैं और ढड़के जिया, तो ये सब बात तो होता ही रहते हैं। तो मूवी के नाम है कोबरा गिल, मैं मुकेश का ये सॉन्ग है।

0: और नजर को संभालो, ये क्या हो रहा है? और ये गीत जो है, मैं हरदम किसी को और वो ढूंढता है, फिल्म के नाम ही रास्ता, रास्ते का पत्थर, जिसमें अमिताभ बच्चन ने काम किए हैं, सिंगर इसमें मुकेश एंड आशा भोसले।
1: मैं हरदम किसी को ढूंढता हूँ, मुझे

और मैं हरदम किसी को ढूंढता हूँ और किसी को खोजता हूँ। दोस्तों एक रोमांटिक सॉन्ग के ओर।

0: en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: और आम लोग जानते हैं हमारे यारो पुराने गीते की मजा कुछ और है। हम चलते हैं परमात्मा श्री मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में।

और दोस्तों प्यार में तो कभी कभी छोटी बात से बड़ी बात हो जाती है, आपको तो मालूम है। और कभी कभी प्यार में लोग भूल जाते हैं कि कौन से बात वो करते हैं, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। तो ये सब बात है हमारे यारों। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो है ओ साथी रे।

0: जीना है और रेडियो फाहुन के बिना कैसे रात कटेगी। तो हम चलते हैं एक रोमांटिक सॉन्ग किशोर जी के आवाज में।
1: हाँ
2: या चुप रहूं
1: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है
1: क्या है,

और दिल की टुकड़ी टुकड़ी करके और मुस्कुरा के चले गई। उसके बाद पे हम एक और गीत को सुनाते हैं।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: Agar ish karo to adabe bhi wafai bhi sikho. Agar ish karo to adabe bhi wafai bhi sikho. Ye chand din kar bekarari mohabbat nahi hoti. Jagne ki bhi jagane ki bhi aadat ho jaye. Kaash tujhko kisi shayar se mohabbat ho jaye. तो हम तुरंत चलते हैं एक गाना की ओर दोस्तों, और वो क्या होता आप खुद ही सुनिए।

मोहब्बत और मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत जो है वो बहुत बड़ा काम का चीज़ है और कभी कभी मोहब्बत में बहुत बहुत गलतियाँ हो जाती है दोस्तों। और गलतियाँ तो हमारे लोग का भी एक हिस्सा है हमारे दोस्तों। तो आज हम आप लोग को कुछ प्यार भरी शायरी सुनाएंगे, कुछ गाना हम सुनाएंगे एक घंटे के लिए, और उसके बाद तो हमारा प्रोग्राम को और आगे को हम बढ़ाएंगे। कहते हैं तेरे ख्याल में जब बेख्याल होता हूँ, तेरे ख्याल में मैं जब बेख्याल होता हूँ, जरा सा देर को ही सही बेमिसाल होता हूँ। थोड़ा से देर होइगे बाकी फिर भी बेमिसाल होता हूँ। तो हम चलते हैं दोस्तों, मुझे नींद न आए, आपको आते हैं, आपको क्या आते हैं, अभी क्या आएंगे दोस्तों, लेकिन आएंगे जरूर। हम चलते हैं एक पुराना नंबर की ओर।

और मुझे नींद न आए, और मुझे नींद न आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का ये फिल्म दिल मूवी का नाम है दोस्तों। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने ये गाना को गाया है। और हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, और यहाँ से हम अपना प्रोग्राम को और आगे को चलाएंगे और सुनाएंगे, और कोई शायरी एक दो बीच बीच में हम कर देंगे। और हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, हम चलते हैं और ये दर्द के बात है। और दर्द में क्या होता है दोस्तों, दर्द में आंस गिर जाता है, दिल रोए पड़ता है, दिल धड़क जाता है। और जब दिल धड़क जाता है तो क्या होता है, आप खुद ही सुनिए।

क्या हुआ जो तूने छू लिया, और जो अगर छू लिया तो उसके आगे आपको क्या होता है दोस्तों, ये मैं क्या करूं आप तो खुद ही जानते हैं। और कहते हैं होठों पर मोहब्बत की फसाना नहीं आती, होठों पर मोहब्बत की फसाना नहीं आती, साहिल पर समंदर की खजाना नहीं आती। और आगे को हम चलते हैं दोस्तों कि कहते हैं इश्क मोहब्बत दीवानी ये बस लफ्ज ही थे, जब तुम मिला तब इन लफ्जों को मैंने मिले। और दोस्तों ऐसे ऐसे कुछ शेरे आज आप लोग को हम जरूर सुनाएंगे, और हमें यही आशा है कि आपको जरूर अच्छा लगेंगे। कहते हैं फूल खिलते हैं बहारों का शमा होता है, फूल खिलते हैं बहारों का शमा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवान होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फहसाना तो निगाहों से बयान होता है। यस मींस रोकेर, फूल खिलते हैं बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में तो प्यार जवान होता है। दिल की बातों का होठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयान होता है दोस्तों। और इस बयान में हम आप लोग के चलते हैं सुबह से लेकर क्या होता है, खाना तो नहीं होता है दोस्तों, और कुछ होता है, वो क्या होता है आप सुनिए।

हम चाहते हैं सिर्फ प्यार करो दोस्तों, और हम अपना प्रोग्राम को और आगे लेकर चलते हैं। हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों कि कहते हैं, प्यार करने वालों कहते हैं कि कब तक वो मेरे होने से इनकार करेंगे, कि कब तक वो मेरे होने से इनकार करेंगे, खुद तो करके वो एक दिन मुझसे प्यार करेंगे। प्यार की आग में हम उसे उसको इतना जलाएंगे कि सारी दिन हमसे प्यार ही करते रहेंगे। यस मेंस, आज हम प्यार के मूड में हैं, इसीलिए प्यार के कुछ शायरी हो जाए। और कहते हैं कि एक पल मैं जो आकर गुजर जाऊं, एक पल में जाकर गुजर जाए, ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहते हैं दुनिया जिसे, एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं दोस्तों। तो ये सब बात शायरी में लोग लिख के धर दिया है, और आज अपनी जिंदगी के कुछ बातें हम आप लोग को सुनाएंगे, और वो क्या है दोस्तों, आओ मिलकर सुन।

मेरे जिंदगी में जब आप आए हो तो बहार बन के आए हो और फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गाना है दोस्तों जो आपके हमने सुनाया है और हम चलते हैं और आगे को दोस्तों। मुझे उस जगह से भी मोहब्बत हो जाती है, आप तो जानते हैं जलो कभी मस्त हो जाते हैं तो वो जगह नहीं छोड़ता है, जगर उसको कुछ सोचना है तो जाकर वहाँ पर बैठ जाता है और बैठ के और जैसे दोस्तों जब हम कुछ लिखते हैं तो मुझे वो स्पेशल जगह होता है जहाँ पर हम बैठ के कुछ लिखते हैं। ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जब जो प्यार के मूड में होता है तो वही जगह वो खोजता है और कहते हैं मुझे उस जगह से भी मोहब्बत हो जाती है जहां बैठकर एक बार तुम्हें सोच लेता हूं। जी हां दोस्तों, और कहते हैं इस दुनिया में लाखों लोग रहते हैं, इस दुनिया में लाखों लोग रहते हैं, कोई हंसता है दोस्तों तो कोई रोता है, पर सबसे सुखी वो होता है जो शाम को दुई बोरल मार के सोता है। एक शायर हो गए भैया, ये हंसते हुए श्री प्यार भरे नहीं लेकिन हंसते हुए नजरे करम मुझ पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं, नजरे करम मुझे पर इतना न कर, मुझे पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं, मुझे इतना न पिला इश्क के जाम कि मैं इसके जहर में आधी हो जाऊं। दोस्तों हम चलते हैं कि अगर आपके दिल ने किसी चुरा लिया है तो ये गाना आपको जरूर सुनना चाहिए।

और चुरा लिया है क्या भैया, दिल के बात होता है, दिल के बात होता है हमारे प्यारे प्यारे और सुनने वालों। और दिल बेस्टमैन से हम चलते हैं एक रीमिक्स गाना की ओर, यानी कि रीमिक्स भी बजाना चाहिए और तुम दिल के धड़कनों में रहते हो, उस गाना की ओर जाते हैं हम दोस्तों। अभी हम वापस आ जाएंगे।

बस तुम दिल की धड़कन में और रहते हो रहते हैं। अलका का ये गाना है और इस फिल्म में काम किया है अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी ने इस फिल्म में काम किया है हमारे दोस्तों। और हमारे प्यारे दोस्तों, ये गाना है जब बारिश आता है तो ये गाना सुनने में और अच्छा लगता है। हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, फिल्म का नाम है सूर्यवंशी, अक्षय कुमार कैटरीना कैफ के, और इस गाना में, इस फिल्म में यानी गाना को गाया है उदित और अलका ने। आओ मिलकर सुना जाए, तो अभी हम वापस आ जाएंगे।

और दोस्तों टिप टिप करता और क्या करता है टिप टिप भैया, बारिश होता है टिप टिप, और जब बारिश होता है तो क्या करना चाहिए दोस्तों, आपकी तो खुद मालूम होगा। हम चलते हैं और आगे को, और बचना ऐ हसीनों, बचना किससे है दोस्तों, उससे बचना है जो दिल के लुटेरा होता है उससे बचना।

और आप किया जाने से हमारा भी यहाँ पर मन बहुत चाहते हैं दोस्तों, और हम इस प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं और कहते हैं सिखवा करने से गए थे और इबादत से हो गई, सिखवा करने गए थे और इबादत से हो गई, तुझे भूलने की जिद थी मगर तेरी आदत से हो गई। और दोस्तों आज हम आप लोग को और तक सैफ तक नेह तक का कुछ गाना सुनाएंगे दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए उदित नारायण एंड अलका याग्निक।

0: आई मेरे, और क्या क्या आप लोग सुनते हैं अलका और उदित नारायण का ये सॉन्ग है दोस्तों। और कहते हैं कि देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम में, देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, हम होश में आने वाले थी कि तुम फिर से मुस्कुरा बैठे। नोखमाल्स नोखीर बेस्टेल इस्तरात, देख के तुम्हारी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, हम होश में आने वाले थी कि तुम फिर से मुस्कुरा बैठे। दोस्तों तो आज आप लोग को हम कुछ शायर और शायरी की और मोहब्बत भरी लवली सॉन्ग्स आप लोग को लिए हम चलाएंगे। और एक और हो जाए, मरते तो लाखों होंगे तुझ पर, मैं तो तेरे साथ जीना चाहता हूँ। दोस्तों और चला जाए और ये गाना कोर कि पूछो जरा पूछो।
1: मुझे

मधुबन के हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 7 2 तक 7 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

0: फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है द प्लस रेडियो पर अनतिलक उक्त बलाइस्त्रेफ या इंटरनेट के लहरों द्वारा ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारी फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। एंड नैतिक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बदंग थोर, तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या तो आप एक इवेंट और खानिशातर हो तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो हो सकता है कि चमत्कार पे चमत्कार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायत सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो ना, और मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतनी बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से यही कहते आ रहा हूँ आप सभी श्रोताओं से कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंडेस भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख, सभी जानकारी बेल फन मांडा तो फ्रेडा फन नी खुश मॉर्गन तो फेफ यूर स्मिराक्स अब फोलगंद टेलीफोन नंबर कंटोर 070-63-2247, स्टूडियो 070-63-2277 पर। जो भी रेडियो का काम हो, डेंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना, यारो चर्चा करते रहना, हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू इसके लिए, और आप सभी को हमारे फुल टीम की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रो को भी बनाए। सभी जानकारी बेल दैनंस कंटोर उर फन मांडा टू फ्रेडा ऑफ 070-63-2247 पर। तो जो भी रे, या तो आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रो को भी बनाए, और जो भी रेडियो का काम हो, डेंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। हम आगे बढ़ाते हैं हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं। बीते हुए हफ्ते हम लोग सभी नगमे फिल्म पतंग के सुन चुके थे, जो रिलीज किया गया था 1963 में, और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार ने काम किया है माला सिन्हा और मनोरमा जी के साथ। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक बहुत ही जबरदस्त फिल्म जो रिलीज किया गया था 1963 में, फिल्म आस का पंछी। और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है मलकाए हुस्ने दिग्रेट विजंती माला जी के साथ। संगीतकार है महान संगीतकार जोड़ी शंकर जय किशन, और सभी गाने लिखे हैं हसरत जय पुरी जी से। तो उसी फिल्म में से आस का पंछी का जो सभी नगमे हैं, मैं सुनाने वाला हूँ आप सभी को। तो एक जबरदस्त सॉन्ग रख चुका हूँ प्लेयर में आप श्रोताओं के सेवा में, एंड फिल्म आज का पंछी '63। जरा दिल थाम के बैठिए, स्पेशल फॉर द मूका फैंस, लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला द हार्ट थ्रोब ऑफ मिलियंस, दमाईटी मुकेश जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे, और साथ दे रही है भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी सुपर हिट सॉन्ग्स तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं। मिलके सुनते हैं शंकर जय किशन की साज पर, अल्फाजे है हसरत जयपुरी जी का।
1: तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, के इन अदाओं पे

new song from the movie Asta Penci. लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला है माइटी मुकेश और लता जी के ब्यूटीफुल आवाजों में कंपोज बाय शंकर जयकिशन। टाइटल सॉन्ग आप सुनने वाले हैं फ्रॉम द मूवी दिल मेरा एक आस का पंछी और सुनाने वाले हैं आप सभी को मशहूर गायक आईडीआर सेस्तख द ग्रेट सुबीर सैन जी हसरत जयपुरी का लिखा हुआ अति सुंदर बयान कंपोज बाय शंकर जयकिशन स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

0: मैं कुछ नहीं।
1: ब्यूटीफुल सॉन्ग है, धीरे चलाओ जरा। महान गायक सुबीर सेन और लता जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। एक फिल्म आज का पंछी नीति एन सस्तक फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है, अति सुंदर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, गीत और गजल ओथ इज गोल्ड। अगला बयान क्वीन ऑफ मेलोडी भारत रत्न सुरोका देवी लता जी के ब्यूटीफुल आवाज में, हाय मेरी उलझी नजर, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग लता जी का, कंपोज बाय महान संगीतकार जोड़ी द ग्रेट शंकर जय किशन। आई फिल्म आज का पंची नेहरी 61।

Mary Ulzi Nezer from the movie Aska Panchi, Bharat Ratna Queen of Melody, Lata Mangeshkar ji ke beautiful awaaz mein. अगला बयान हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, जरा दिल थाम के बैठिए, खास करके स्पेशल फॉर द मुका फैंस. एक मनपसंद नगमा जो मेरे ख्याल से सभी मुका फैंस के होठों पे हमेशा रहते हैं कि अपनी भी क्या जिंदगी है निराली. माइटी मुकेश के ब्यूटीफुल आवाज में एड फिल्म आज का पंछी, अ मास्टरपीस ऑफ कंपोजिंग बाय महान संगीतकार जोड़ी द ग्रेट शंकर जय किशन, और अल्फाजे है शैलेंद्र जी का. स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम, खास करके फॉर ऑल द मुका फैंस.

माइती मुकेश जी के मधुर आवाज में आप ये अति सुंदर सॉन्ग सुना एड फिल्म आस का पंछी, दिल को छू लेने वाला नगमा कंपोज बाय द ग्रेट शंकर जयकिशन, क्या संगीतकार जोड़ी था। और अल्फाजे ये मत भूलना द ग्रेट लेखक शैलेंद्र जी का। तो साथियों कुछ शेयर्स हो जाए ना हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए, अर्ज किया है कुछ नए नए ताजे ताजे भेजे हैं भाई भूपेंद्र जी ने कि ना देख आसमान को इतनी हसरत से अब, ना देख आसमान को इतनी हसरत से अब, वो सितारा टूट गया है जिसकी तुझको तलाश थी। क्या बात, वाह। कुछ इस तरह से सौदा किया मुझसे वक्त ने, कुछ इस तरह से सौदा किया मुझसे वक्त ने के तजुर्बे देकर वो मेरी मासूमियत ले गया। होता है यारो, ढूंढला रहे है शहर के जलते हुए चराग, ढूंढला रहे है शहर के जलते हुए चराग, ऐ नींद आ भी जा के बहुत रात हो चुकी। तुम फिकर ना करो मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा, तुम फिकर ना करो मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा, एक पैगाम भेजा के मौत बस आने ही वाली है। माफी चाहता हूं गुनहगार हूं तेरा ऐ दिल, माफी चाहता हूं गुनहगार हूं तेरा ऐ दिल, तुझे उसके हवाले किया, तुझे उसके हवाले किया जिसे तेरी कदर कभी ना थी। नए लोग जब मिलते हैं ना, नए लोग जब मिलते हैं तो पुराने भूल जाते हैं, मगर नया जब दिल दुखाते हैं ना तो याद पुराने ही आते हैं। क्या बात है, वाह। तो ये था कुछ शेयर्स हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए। अगला बयान के तरफ बढ़ते हैं और ये एक मजेदार सॉन्ग है और सुनाने वाले हैं आप सभी को मोहम्मद रफी साहब जी कोरस के साथ की। अब 4 दिनों की तो छुट्टी है,

0: भैया उस मांग में तारे भरना है।
1: अब चार दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है। जिस मांग में दिल को मार धड़के हैं, देखेंगे उन्हें तो

जवां शिकवे होंगे, होंठों पे हंसी लहराएगी, सागर से मिलेगी जब नदिया तूफान पे रौनक आएगी, हाथों

0: है।
1: ब्यूटीफुल सॉन्ग श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया एड फिल्म आज का पंछी 1961 पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब और साथियों के आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना, कंपोज बाय शंकर जय किशन और अल्फाजे थे हसरत जयपुरी जी का। एक बार फिर आप सभी दिल थाम लीजिए, स्पेशल फॉर द मूका फैंस एड फिल्म आज का पंछी जबरदस्त सॉन्ग सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को, लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला द हार्ट ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश जी का ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे ए दिल प्यार की मंजिल, कंपोज बाय शंकर जय किशन, अल्फाजे शैलेंद्र जी का।

सत्यवतन कहा वचन कहा ये महान गायक लेखक दिग्विजय प्रदीप जी एड फिल्म अमर रहे ये प्यार नेहरी एनन सस्तख श्री रामचंद्र जी के साँच पर। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूं यारो, कहीं जाना मत।

0: सबै प्लस रेडियो सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की राज आप भी ले द प्लस रेडियो और दूर दूर तक देश के कोने कोने में सुने फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो की वाणी डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग आकाशवाणी
1: प्रिय प्रिय साथियों प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से मैं करते आ रहा हूं वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ फ्रॉम द मूवी ललकार कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी कि आज गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो क्या जाने कल कोई साथ ही छूट जाएगा जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है इसलिए हम लोग तो यहाँ से सदियों से यही कहते आ रहे हैं आप सभी से कि हैप्टू नास्त आउट एट लिफ कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो खुद को आगे को बढ़ाना है देश को भी आगे को बढ़ाना है कौम को भी आगे को बढ़ाना है तो ये शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे एक अति सुंदर प्रोग्राम संगीतकारों का दास्तान नामक कार्यक्रम और उसके बाद कुछ नए आने की पुराने पुराने नगमे हैं जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट राजेंद्र कुमार मिस्टर जुबली कुमार ने काम किए हैं बीच में कुछ ज्ञान के बातें हैं इसे शायरी भी है तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना मजे लेते रहना रफी साहब

Halo muskuralo, mefiles segalo, hamisha kitra, program ka suruat, Rafi sahab ji ke madhur awaz mein. साथियों आज का इस हसीन प्रोग्राम का शुरुआत मैं करने वाला हूँ महान संगीतकार अगडियार सेस्तख सीफतख तख्तख और इतने महान महान काम किया है ये महान संगीतकार गायक प्रोड्यूसर और राइटर श्री भूपेन हजारिका का ये गाया हुआ नगमा भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के साथ एड फिल्म एक पल उन्हीं के साज और संगीत पर ये ब्यूटीफुल ड्यूएट मैं तू संगे जाऊंगा वनवास क्या बात है ब्यूटीफुल सॉन्ग महान गायक महान संगीतकार भूपेन हजारिका और लता जी और खास करके ये संगीतकार ये गायक म्यूजिक डायरेक्टर लता जी के दिल के बहुत ही करीब था.

ब्यूटीफुल भजन सुनाया आप सभी को भारत रत्न लता मंगेशकर जी और महान गायक संगीतकार द ग्रेट भूपेन हजारिका। और ये एक रामायण कथा है, सीता जी राम जी से कह रही थी कि मैं तो संग जाऊं वनवास। अ मास्टर पीस ऑफ कंपोजिंग बाय मैस्ट्रो भूपेन हजारिका जी। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं, पिघलता हुआ ये समा, ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी दरमियान, जावेद अख्तर जी का लिखा हुआ अति सुंदर बयान सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को। क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल, महान गाने वाली हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का द ग्रेट आशा भोसले जी साथ दे रहा है द प्रिंस फ्रॉम बॉलीवुड उदित नारायण जी। म्यूजिक अरेंज एंड कंपोज बाय माएस्ट्रो भूपेन हजारिका।

beautiful song from the movie Darmian, composed by Maestro Bhupen Hazarika. अच्छा जी, और उदित नारायण जी के आवाजों में ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है संगीतकारों का दास्ता नामक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। महान संगीतकार द ग्रेट भूपेन हजारिका के कुछ बनाए हुए नगमे चल रहे हैं। अगला बयान पद्म भूषण मन्ना डे जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे। हाथ मेरे है मधु का प्याला, कंपोज बाय माएस्ट्रो भूपेन हजारिका, 1974 फ्रॉम द मूवी आरोप।

डॉक्टर हेमंत कुमार के साच पर ये सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। भूपेन हजारिका जी के मधुरंग आवाज में एक बंगाली सॉन्ग। अगला बयान फ्रॉम द मूवी आरोप 1974, एक बार फिर पद्म भूषण दादा मन्ना डे ओ फूलों के देश वाली।

Beautiful Song from the movie Aarop 1974. Padma Bhushan Dada Manna Deji ke Beautiful Awaaz mein composed by Dr. Bhupen Hazarika. Found Hindustani Radio pe aap tune hai Geet aur Ghazal Old is Gold namak program aap sun rahe hai khas karke संगीतकार कथा दास्ता नामक कार्यक्रम और स्पेशल चल रहा है महान संगीतकार आइडियार 50-60-70 द ग्रेट डॉक्टर भूपेन हजारिका जी के कुछ गाए हुए और कुछ बनाए हुए कंपोज किए हुए नगमे चल रहे हैं। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं। मेघे गर्जे क्या बात है। ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय डॉक्टर भूपेन हजारिका और मेरे ख्याल से पीछे कुछ दादा हेमंत कुमार जी के आवाज भी आप सुनेंगे।

गुम गुम मेघे गर्जे, अति सुंदर बयान डॉक्टर भूपेन हजारिका और दादा हेमंत कुमार के आवाजों में, और डॉक्टर भूपेन का लिखा हुआ और बनाया हुआ ये अति सुंदर धुन आप श्रोताओं ने सुना। एक और हो जाए 1957 दादा हेमंत कुमार और डॉक्टर भूपेन हजारिका जी के कमाल, आप सुनिए अंका बंका पाथर। और साथ ही साथ ये आखिरी बयान आज का इस

हेमंता मुखर्जी और भूपेन हजारिका जी की आवाजों में 1957 ये अति सुंदर बंगाली सॉन्ग आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया और वो भी खास करके फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से। हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, ये तक था आज का ये हसीन स्पेशल डॉक्टर भूपेन हजारिका, महान गायक, महान संगीतकार और लेखक, जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूं यारो, कहीं जाना मत।

पावन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुने द प्लस रेडियो पर इंटरनेट के लहरों द्वारा पावन एफएम चैनल पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम कभी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम। एनाटिलिक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बताते हैं, जो भी रेडियो का काम हो, देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो हस फरमाई से हो, जरूरी खबरें या तो इश्तिहारे, देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो की फाइट से स्टे डाउन 07-365-22-47-40, bellen tijdens kantoor, uren vanaf maandag tot vrijdag van 9 tot 5. Ja, toch op Tarker op 070-362-2077, Studio Katarka nummer 1. Dus op hier radio kakaam ho, denk aan Fahun Hindustani Radio. इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार, और रिक्लाम बनाते रहना। हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और इसके लिए हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। Bent u nog geen lid van Fahun Hindustani Radio, तो बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द Fahun Hindustani Radio का मेंबर बने और को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी बेल अटेंडेंस कंटोर इरफान ऑफ मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 9 टू 5 ऑफ 07-365-22-47 या तो 07-362-2077 पर आप संपर्क करें। तो एकदम लेकर चलते हैं, कुछ नगमे रह गया है सुनाने का फ्रॉम द मूवी धूल का फूल। आकाशवाणी आया था ये अति सुंदर बयान इस फिल्म में, और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को शुरू का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ ये अति सुंदर बयान, कंपोज बाय एन दत्ता। एवरग्रीन सॉन्ग दामन में दाग लगा बैठे।

दर्द से भरा हुआ यह अति सुंदर बयान आप श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में, कंपोज बाय एन दत्ता अल्फाजे, महान लेखक शाहिर लुधियानवी जी का। कैसे कहूं मन की बात, फ्रॉम द मूवी धूल का फूल। एक बार फिर मशहूर गाने वाली उस जमाने का द ग्रेट सुधा मल्होत्रा एन दत्ता के साज शाहिर के अल्फाजे।

Beautiful song, क्लासिकल तबला प्लेयर, क्या बात है, कैसे कहूं मन की बात. फ्रॉम द मूवी ढोल का फूल 1959, साहिर लुधियान, वी के अल्फांजे एन दत्ता के साथ, और आवाज थी सुधा मल्होत्रा जी का. हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन हैं यारो, ऑल दिस गोल्ड नाम कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, नगमे चल रहे हैं फ्रॉम द मूवी ढोल का फूल. और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है माला सिन्हा जी के साथ, नंदा अशोक कुमार और जीवन भी इस फिल्म में काम किए हैं मोहन छोटी जी के साथ. तो कुछ आखिरी शेर्स हो जाए यारो हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए. अर्ज क्या है यारो कि नजर अंदाज कैसे करे आपको, नजर अंदाज कैसे करे आपको, नजरों में बिठाया है जो आपको, याद आने पर रोए भी तो कैसे, याद आने पर रोए भी तो कैसे, डरते हैं झुकी जो पलके तो चुभेंगी आपको. दूर हो जाऊं तो जरा इंतजार करना, अपने दिल को ना यूं बेकरार करना, लौट कर आएंगे हम जहां भी जाएंगे, लौट कर आएंगे हम जहां भी जाएंगे, बस हमारी दोस्ती पर एतबार करना. बारिश की तरह तुझ पे बरसती रहे खुशियाँ, बारिश की तरह तुझ पे बरसती रहे खुशियाँ, हर बूंद तेरे दिल से हर एक गम को मिटा दे, क्या बात हुआ. कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को ही बनाया, हर किसी के लिए इस तरह मिलना ही उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया, मानो मुझको बनाया तेरे जैसी ही किसी के लिए. दोस्ती नाम हर सुख दुख की कहानी का, दोस्ती राज हर सदा मुस्कुराने का, ये कोई पल भर की पहचान नहीं, ये कोई पल भर की पहचान नहीं यारो, ये वादा है उम्र भर साथ निभाने का, जियो राजे वाह. वक्त गुजरेगा हम बिखड़ जाएंगे, वक्त गुजरेगा हम बिखड़ जाएंगे, कौन जाने हम किधर जाएंगे, हम दोस्ती की परछाई है, हम तो दोस्ती की परछाई है यारो, जहां आप हुए तन्हा वहीं हम नजर आएंगे, क्या बात है. आखिरी शेर यारो आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में, दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं, दोस्ती से कीमती तो कोई जागीर नहीं, दोस्ती से खूबसूरत कोई तस्वीर भी नहीं, दोस्ती तो सिर्फ एक कच्चा धागा है, दोस्ती तो सिर्फ एक कच्चा धागा है, धागे से मजबूत कोई जंजीर नहीं. तो ये था कुछ शेर्स हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए. अगला बयान एक दिल को छू लेने वाला नगमा है, खास के अल्फाजे पर आप ध्यान दें. रवि साहब जी के मधुर आवाज में आई द फिल्म ढोल का फूल, मास्टर पीस कंपोजिंग ऑफ एन दत्ता, म्यूजिक डायरेक्टर दत्ता नाइक. और क्या अल्फाजे है साहिर जी का कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है तू इंसान ही बनेगा, क्या बात है, क्या अल्फाजे है. ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल.

जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरम

0: इनके लिए मौत का ऐलान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा।
1: पद्म श्री मोहम्मद रफी साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में फ्रॉम द मूवी धूल का फूल। धूल का फूल क्या बात है, क्या अल्फाजे थे, क्या बयान था और क्या कंपोजिंग दत्ता नाइक जी का एंड दत्ता मेयर बकेंट अल्स The great music director from the movie धूल का फूल। और क्या अल्फाजे है साहिर जी का, दिल को छू लिया। तो एक आखिरी बयान आज के इस हसीन कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्म धूल का फूल 1959। एक बार फिर वही मशहूर संगीतकार जोड़ी गायक के महेंद्र कपूर और आशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाजों में ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे, कंपोज बाय एन दत्ता और अल्फाजे है शाहिर जी का। झुकती घटा घटी हवा सपनी जागे यानी जगाए।

ভুল সং যুক্তি ঘটা ঘটি হওয়া সপনে জগায়ে এইট ফিল্ম ধুল কা ফুল। और आप श्रोताओं के सामने अति सुंदर बयान पेश किया गया अशा भोसले और महेंद्र कपूर जी के मधुर आवाजों में। म्यूजिक डायरेक्टर एन दत्ता और अल्फाजे था मैस्ट्रो साहिर जी का। तुम्हारे भी प्रिय श्रोताओं ये तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया। ये यश उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूँ यारों की जिस तौर तरीक से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप श्रोताओं को पसंद आया हुआ होगा। अगर कुदरत जिंदगी ने साथ दिया तो आने वाले दिनों में मैं आप सभी से फिर मिलने वाले हैं आवाज के जरिए। और जाते जाते हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो गुनगुना देता हूँ।

तूफान हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आपके सेवा और खिदमत में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है द प्लस रेडियो पर नैतिक उक्त बुलेस्त्र इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फूल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। नतुलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बदंत हैं। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से इश्तिहारे या तो जरूरी खबरें अति किफायत सस्ते दाम में आप सभी के लिए हम लोग बेचैनी से करने के लिए इंतज़ार में रहते हैं ये सब काम करने के लिए। तो ज़रूर अगर आपको एक कमर्शियल बनवाना है ख़ास फरमाई से या ज़रूरी खबरें, तो ज़रूर आप तार करें फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में फन मांडा टॉट फ्राइडा फन नीख टॉट फाइव ऑफ नो 7 3 6 2 2 7 4। दफ्तर का तार का नंबर और स्टूडियो का तार का नंबर है 07 3 2 6 2 7 7। तो जो भी रेडियो का काम हो, दें कन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो किफायत से दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी स्टार बैंस ऑफ द एस्ट प्लांट्स। तो जो भी रेडियो का काम हो, दें कन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। बनती नोख खिन लिट फन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी बेल ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स फन मांडा टॉट फ्राइडा फन नीख टॉट फाइव ऑफ 07 3 6 2 2 7 4 ऑफ ऑफ 07 3 6 2 2 7 7। तो आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी का मेंबर बने और को भी बनाए। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रेक्लाम बनाते रहना। हम लोग तो ये चाहते हैं कि हम लोगों का प्रोग्राम आपके रिश्तेदारे हिती प्रेमी रान पड़ोसी कोलेखवन और बीर मनवन भी सुने। तो जरूर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के बारे में आप चर्चा करते रहना, बातें शातें करते रहना। इसके लिए हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को तह दिल से धन्यवाद। वादा के मुताबिक एक ही बढ़ते हैं कि दम प्रोग्राम की तरफ। और बीते हुए हफ्ते हम लोग पहुंच चुके थे फिल्म चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, जो रिलीज किया गया था 1995 तक में। और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है मलकाए हुस्न, मीना कुमारी जी के साथ महान संगीतकार रवि शर्मा के साथ, प्रेम धवन जी के अल्फाजे। कुछ नगमे सुना चुके थे, कुछ नगमे बाकी हैं। तो एक अति सुंदर बयान रख चुका हूँ प्लेयर में आप सभी को सुनाने के लिए। एड फिल्म चिराग कहाँ रोशनी कहाँ। और लाते हैं मशहूर गाने वाली नाइटिंगेल सुमन कल्याणपुर जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे रवि शर्मा के सांच पर अब तो आंख लड़ चुकी है स्पेशल।

0: सुंदर बयान श्रोताओं के सेवा में पेश किया गाइड फिल्म चिराग कहां रोशनी कहां, नाइटिंगेल सुमन कल्याणपुर के ब्यूटीफुल आवाज, रवि शर्मा के साज, प्रेम धवन के अल्फाजे। ब्यूटीफुल सॉन्ग आप सुनने वाले हैं यारो। एक बार फिर क्वीन ऑफ मेलोडी भारत रत्न लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में रवि शर्मा का ये बनाया हुआ अति सुंदर बयान और एड फिल्म चिराग कहां रोशनी कहां निगरी निगन फेफ तक चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक।
1: मेरे नन्हे सुन मेरे मुन्ने सुन ले एक कहानी। बहुत दिनों की बात है, एक था राजा एक थी रानी। राजा रानी के घर में था राजकुमार एक प्यारा। एक के दिल का टुकड़ा था वो, एक की आंख का तारा। एक दिन राजा का मन चाहा चलकर करें शिकार। निकल पड़ा वो होकर एक नीले घोड़े पे सवार। और मालूम है वो क्या कहता जा रहा था?
2: क्या माँ?

0: एक जादूगर ने जादू का तीर जो छोड़ा, तोता बनकर रह गया राजा, पत्थर बनकर घोड़ा।
1: फिर क्या हुआ माँ, फिर क्या हुआ?
2: फिर राजा कैसे कहता,

0: देख के राजा को आते रानी की नींद समाई, राजमहल के द्वार पे झटपट दौड़ी दौड़ी आई। राजा आया बोला राजकुमार, अपने हाथों से रानी ने जाकर खोला द्वार।
1: अति सुंदर बयान है, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। आई फिल्म चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में कंपोज बाय माएस्ट्रो रवि शर्मा। आए हो तो देख लो दुनिया सारा, अ ब्यूटीफुल पार्टी सॉन्ग सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को। एट 95 तक Nightingale Suman Kalyanpur, composed by Ravi Sharma.

Ati sunder beane sur tau ke sewa me peski aga beautiful gane wali aure ek ati sunder avans ke malkin de great suman kalyan pur satyo ke sath sunai aap sabhi ko ye ati sunder beyan ai dufrim chirag kaha roshni kaha Ravi Sharma ke saath par बड़ा बेदर्द जहां है एक सैड सॉन्ग आप सुनेंगे और सुनाने वाली है आप सभी को मशहूर गाने वाली हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का सरस्वती माता क्वीन ऑफ मेलोडी भारत रत्न लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में कंपोज बाय रवि शर्मा

दर्द से भरा हुआ ये अति सुंदर बयान श्रोताओं के सामने पेश किया गया। एड फिल्म चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, संगीतकार रवि शर्मा के साथ, और गाने वाली थी भारत रत्न लता मंगेशकर जी। एक आखिरी बयान रह गया सुनाने के एड फिल्म चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, और वो सुनाने वाली है आप सभी को एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी, रवि शर्मा के साथ। पर अति सुंदर बयान को लिखा है भी रवि शर्मा जी ने। द सैड फैशन ऑफ टिम टिम करते तारे, एड फिल्म चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, 1959।

Tetare, beautiful song, set version from the movie Chirag Kaha Roshni Kaha, 1959. Meena Kumari aur Rajinder Kumar ji ka ye beautiful movie, agar fursat mile to zarur kabhi dekhna, khas karke gaane ke liye. Ravi Sharma ke saaj par sabhi gaane aap logon ko main suna chuka. Film Chirag Kahan Roshni Ka. So, yaro, waqt ho gaya hai na kuch sher shayari ho jaye hamare shers ke chahne walon ke liye. Kuch doston ke shers se bheje hai yaro ka yaar bhai Bhupendra ji, direct from Mumbai city. क्या है यारो कि तुम हमेशा खुश रहो, ऐसी विश ऐसी ख्वाहिश है हमारी, और आगे बढ़ते रहो ऐसी दुआ भी है हमारी. क्या बात है, तुम जहां भी हो जैसे भी हो एक दिन हमें ढूंढ पाओ, ऐसी ख्वाहिश है हमारी. ट्रस्ट इज लाइक अ मिरर. Trust is like a mirror. Once you break it, you can never look at it the same again. Khuda kare salamat rahe kisi ki dua ki tarah. Khuda kare tu salamat rahe kisi dua ki tarah. Ek tu aur dusra muskurana tera. दोस्ती करो तो धोखा मत देना यारो, दोस्ती करो तो धोखा मत देना. दोस्तों को बेवफाई का तोहफा मत देना. कोई तुम्हें रहे याद करके, कोई तुम्हें याद करके रहे ऐसा कभी मौका मत देना. दोस्ती अच्छी हो तो रंग लाती है, दोस्ती गहरी हो तो सबको भाती है. दोस्ती नादान हो तो टूट जाती है, पर अगर दोस्ती अपने जैसी हो तो इतिहास बन जाती है, और इतिहास यानी खस्कीदनेस बनाती है. दोस्त को भुलाना गलत है यारो, दोस्त को भुलाना गलत है, उन्हीं का जिंदगी भर साथ है. अगर भूल गए तो खाली हाथ है, और अगर साथ रहे तो जमाना कहेगा क्या बात है. तो था कुछ शेर्स हमारे शेर्स के पुजारियों के लिए. तो यारो सभी फिल्म यानी सभी गाने फिल्म चिराग कहाँ रोशनी कहाँ को मैं आप सभी को सुना चुके. तो अब लेकर चलते हैं एक मूवी जो काफ़ी चला था, ऑल्सो रिलीज किया गया था 1995. Ik kan me nog herinneren als klein jochie van, ik denk zo net 5 woorden of zo. En er werd zoveel gepraat over deze film in Suriname. Dhool ka phool halchal macha diya tha bhaiya daparal mein. Aur sabitri mein, kuara sang mein, hansu mein ka batai bhaiya. To usi film mein se aap songs sunenge aur... इस फिल्म में धूल का फूल में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है ब्यूटीफुल एक्ट्रेस मलकाय हुस्न, द ग्रेट माला सिन्हा जी के साथ साथ भी नंदा जी ने काम किया है. संगीतकार एन दत्ता के साथ है, और गाने हैं महान लेखक साहिर लुधियानी जी का. तो उसी फिल्म में से अब आप कुछ गाने सुनेंगे. तू मेरा प्यार का फूल है, दिल को छू लेने वाला नगमा सुनन को जा रही है आप सभी को. भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी, कंपोज बाय मैस्ट्रो एन दत्ता, और लिखा है साहिर लिधियानवी.

प्यार बात है, तू मेरा प्यार का फूल है, इतना दर्द इस गाने में था और महसूस भी किया होगा आप लोग ने। एड फिल्म धूल का फूल शाहिर लुधियानवी के अल्फाजे एन दत्ता के साथ और कितनी दर्द से भरी हुई आवाज़ लता जी के इस गाने में आपने महसूस किया। एक ब्यूटीफुल लव सॉन्ग आप सुनेंगे, ब्यूटीफुल डुएट है पद्मश्री महेंद्र कपूर और लता जी के आवाज़ों में। आप ये ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनिए और मनोरंजन उठाइए। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ तेरे।

है तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। ब्यूटीफुल सॉन्ग, वंडरफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी ढोल का पुल 1959। एस एन दत्ता के साथ और साहिर लुधियानवी के अल्फाजे, आवाजें थी लता जी और महेंद्र कपूर जी का। अपनी खातिर जीना है यारो, सही बात फरमाया नबे वेलन एक शर्मा, अफेंतु इस वेलेंस नोडग। अपनी खातिर जीना है, महेंद्र कपूर और सुधा मल्होत्रा पेश करने वाले हैं आप श्रोताओं के सेवा में ये ती सुंदर बयान, कंपोज बाय अनदत्ता, अनरिटन बाय साहिर लुधियानवी।